0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: What? 70% मैरिड इंडियन कपल्स ये डिवोर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप डिवोर्स. सो एक नई रिसर्च आई है, 15 दिन पुरानी है, जिसमें 70% कपल्स जो इंडिया में मैरिड है अक्रॉस द कंट्री, दे हैव डिसाइडेड कि एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, नॉटी होंगे इन द सेम बेड, लेकिन जहां बात आएगी टू स्लीप, हम दोनों अलग अलग बेडरूम्स में. माई डार्लिंग, इट इज कॉल्ड स्लीप डिवोर्स एंड इट इज गेटिंग सुपर प्रेवलेंट इन इंडिया. मैं तो ये कह रही हूँ, गो अ स्टेप फॉरवर्ड. मैं हमेशा ये कहती थी, हर रिलेशनशिप में कहीं भी रहना है किसी के साथ कितने भी टाइम तक, नो प्रॉब्लम. जस्ट द ओनली थिंग दैट यू शुड और शुड नॉट डू इज शेयर द सेम बाथरूम. आपको नहीं लगता कि एक रिलेशनशिप में अगर अलग अलग बाथरूम्स हों तो वो रिलेशनशिप गहरा और बेहतर हो जाता है? व्हाटएवर योर ओपिनियन ऑन दैट.

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब नहीं।
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे,
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
0: हैं। सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहु उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
0: दिखाइए,
1: दिखाइए आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट पकड़।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
8: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
9: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रिवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्रिवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ यू हैड अ वन नाइट स्टैंड. हे भगवान, ये दुनिया आपको कितना जज करने वाली है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स,
1: जिसका मतलब ये है कि आपने जिंदगी में जो भी गन मचाया, इट डजंट रियली मैटर, आप यहाँ के कन्फेस कर दो और मैं आपको रोशिफाई कर दूंगी, मामला यही दफना देंगे और उसके बाद आप अपनी गंदी हरकतें एक नए तरीके से जारी रख सकते हो. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. लेट्स फिगर आउट व्हाट डर्टी थिंग्स ही हैज बीन अप टू. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशि, कैसे हो आप?
1: मैं तो अच्छी हूँ. आप एक स्केल ऑफ 1 to 10 पर कितने गंदे बच्चे हो?
3: मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, लेकिन कुछ लड़कियों के लिए जो, इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए जो बच्चे जैसा ही होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है. तो मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को ना पेट स्पेशली मुझे कुत्ते नहीं पसंद आ रहा. सॉरी फॉर द लिटरल लैंग्वेज.
1: दैट्स ऑलराइट. होता है, कोई लोगों को नहीं पसंद.
3: ठीक है, मुझे नहीं पसंद, मतलब आपको पसंद है बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे डर लगता है. ठीक है, एक तो अच्छी बॉडी हो या कुछ भी हो तो लड़कियों को लगता है, या किसी को भी लगता है, या किसी कुत्ते से है, किसने बनाई है बॉडी, इसलिए थोड़ी बनाई है कि कुत्ता आके काट ले मुझे. तो मुझे डर लगता है इस चीज से. और अब मेरी जो गर्लफ्रेंड है, उनको कुत्तों से कुछ ज्यादा ही प्यार है. उन्होंने घर पे रखा हुआ है कुत्ता. तो अब मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे कि जब वो मैं आऊँ तो कुत्ता बंद हो. ठीक है, कुत्ता नहीं आना चाहिए हमारी कॉन्वर्सेशन या हमारे बीच में बिल्कुल भी. तो हम लोग अब मीटिंग आउट, और तभी उसके बाद पीछे से मेरे को, मैं सामने हूँ, पीछे से आके मुझे कोई कर रहा है. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई. और भाई साहब मैंने चीख मारी, मैं कहा तेरी मतलब लिटरली सेट. एंड उसके बाद ही जितना फनी लग रहा है उतना ही डरावना सीन था ये. मेरे सांस सूख के मैं ऐसे हो गया, डर गया बिल्कुल. मैंने फिर उसके बाद बोला अपनी मंदी को, मैंने कहा सुन यार, तेरी जिंदगी में मैं रहूंगा या ये कुत्ता. तो इमेजिन करिए उसने कुत्ते को चूज कर लिया मेरे.
1: Oh my God, this is like so bad. Oh, यार आपके साथ तो बहुत खराब हुआ. एक तो like you are in the middle of getting action, और हो सकता है वो doggy also wanted to get some fun.
3: तो यार वो मेरे से क्यों action मांग रहा है. तो मतलब बहुत उस time देखो, मतलब मैं भी उस time तो मैं ऐसे डर गया था बिल्कुल, ये मेरे साथ हुआ क्या, ये पीछे से कौन आ गया.
1: एक तरह मुझे ये डॉगी स्टोरी इमेजिन करके इतना फन लग रहा है, और आई एम फीलिंग रियली बैड कि उस बंदी ने आपको नहीं अपने

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरु देव।
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
0: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
3: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islington.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mir-

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप उस तरह के इंसान हो जिसे सिर्फ वर्जिन बीचेस में इंटरेस्ट है, देन आप एग्जैक्टली मेरे तरह के इंसान हो, हू इज जस्ट सो टायर्ड ऑफ गोइंग टू गोवा नाउ, और आपको कुछ नया डेफिनेटली ट्राई करना पड़ेगा जिंदगी में, देन मे आई सजेस्ट दैट यू हेड टू कर्नाटका. तो कर्नाटका में देयर इज दिस बीच कॉल्ड सेंट मैरीज बीच. अनफॉर्चुनेटली आप वहां पर रह नहीं सकते हो, बिकॉज ये जो बीच है ना, ये एक लावा फॉर्मेशन से बना है इन द अरेबियन सी. आई मीन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितना खूबसूरत है. मैंने अभी तक सिर्फ इसे देखा है, आई हैवंट रियली बीन टू दिस प्लेस. और यहाँ पर आपको क्या करना है, दिस इज ऑफ द कोस्ट ऑफ उदुपी इन कर्नाटका. तो आप एक फेरी लोगे फ्रॉम मालपे, जो एक फिशिंग हार्बर है, और वहां से आप जाओगे सेंट मैरीज बीच पे. इसे कोकोनट आइलैंड भी कहते हैं. यहाँ पर बैठने के लिए सिर्फ 4-5 टाइल्स हैं, बाकी सिर्फ सैंड ही सैंड. बट यू नो व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस बीच इज, इसमें जहां देखो इतने अमेजिंग यूनिक इनक्रेडिबल सीशेल्स हैं. इफ यू आर कपलिंग विद समवन इन लाइफ राइट नाउ और आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अनफॉरगेटेबल करना चाहते हो जो किसी भी मतलब ट्रैवल लॉग में भी मेंशन नहीं है, देन आई थिंक कोकोनट आइलैंड इज द प्लेस फॉर यू. अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो हाउएवर and you want to travel with someone, then may I raise my hand and present myself, because main solo travel karke thak gayi hu and I need a partner. So if you want a partner with me, hit me up insta par ya fb par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai r o c h i e, and while you do that, kahin mat jana kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. Iscabana, Uscabana, Sacabana, Rabana, Burka, Burka. La Virpa, la Burka. Mirchi, Burka.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ.
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा.
2: तो मैं अभी बता दूँ.
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
2: संजना.
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का.
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं.
1: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं. ओके चलिए. हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं.
1: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का. मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है.
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं. आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू. थैंक यू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा.
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा यूज किया गया वर्ड इन 2026 सो फार कंटिन्यूज टू बी द वर्ड लव. और लव से मुझे एक ही चीज याद आती है, आपके दिल की दिक्कतें, आपका बढ़ता हार्ट बर्न. बिकॉज नो लव स्टोरी इज फ्री ऑफ ग्रीफ. और अगर आपकी जिंदगी में ग्रीफ है या बाय सम क्वर्क ऑफ फेट GT यानी कि गुड ट्रिप है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इन आइदर केस, लेट्स टॉक अबाउट योर लव स्टोरी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. एंड बाय द वे, आज काफी हॉट लग रहे हो आप. ऑन दैट नोट, डोंट फॉरगेट टू फाइंड मी ऑन योर सोशल्स. एंड व्हाइल यू डू दैट, मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
2: हेलो,
1: कैसे हो आप?
2: बहुत बढ़िया.
1: झूठ मत बोलो, बहुत बढ़िया होते तो अपना नंबर नहीं भेजते कि फोन कर दे, लव प्रॉब्लम है.
2: बहुत बढ़िया, अभी तक थे. हाँ. अब मैं जब डिस्कस करूंगा, हाँ, तब देखते हैं कैसे हैं.
1: बताओ ना, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में?
2: एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मतलब थी, तो अभी उसके रिसेंटली 2-3 महीने पहले शादी हो गई है.
1: अयो,
2: राइट. हाँ, तो बट अभी अटैचमेंट ऐसा है कि अभी भी हम लोग बात करना नहीं छोड़ रहे, ठीक है. एंड ये बात किसी को अभी पता नहीं है कि हम लोग बात करते हैं एंड मिल भी रहे हैं हम लोग.
1: और आप दोनों के बीच में इंटीमेसी का क्या सीन है?
2: वो भी है, सब कुछ है, मतलब जैसे हम लोग को पहला रिलेशनशिप था वैसे ही चल रहा है. बट ऐसे मतलब शादी करने से या शादी होने से कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ा दोनों में, तो ये प्रॉब्लम तो है क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है, क्योंकि उसका उसकी तरफ से अटैचमेंट होगा नहीं और ये मेरी अटैचमेंट खत्म होगी नहीं कभी उससे. वही समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप है 3-4 साल से, तो वही समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें.
1: मतलब आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये मॉरली सही है या नहीं, या आप मुझे ये बता रहे हो कि मतलब इन द फ्यूचर हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट? आपके दिमाग में प्रॉब्लम किस चीज को लेकर है?
2: मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम है कि अगर कभी बाय चांस ये बात पता चल गई कि शादी के बाद भी बातचीत करते थे, शादी के पहले तो ठीक है, बट अभी शादी के बाद भी बातचीत चल रही है, दैट इज रॉन्ग. लेकिन अगर नहीं पता चली, और क्योंकि लड़की की साइड से 100% एफर्ट आ रहा है, लड़की मतलब अटैचमेंट छोड़ ही नहीं पा रही है मेरे लिए, और मैंने अगर छोड़ दिया तो वो पूरी तरीके से वो हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, तो फिर वो मैं मॉरली उसको सपोर्ट करता हूँ, तो फिर वो चीजें फिर जाके फिर उधर ही हो जाती है, इंटीमेसी में ही हो जाता है सब कुछ
1: यार. और एक बात बता, ठीक है, कि मेरा सवाल ये है दैट हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ?
2: 29.
1: आप 29 के हो, यू विल टर्न 30, 31. कहीं ना कहीं आपको घर

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: मैं थक गया हूँ लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड बन बन के। मैं भी रॉयल्स के ईशान खट्टर की तरह लड़कियों को हॉट लगना चाहता हूँ। कैसे करूंगा मैं ये मैनेज?
1: रोशी के डीएम से।
0: ओ गॉड हितेश, आई कैन टोटली सेंस द फ्रस्ट्रेशन इन योर वॉइस, बट आई कैन हेल्प यू बिकम द नेक्स्ट हॉट गाय। सिंपली एक दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो गर्ल्स डिग मैन हु आर वेल ड्रेस्ड। इसका ये मतलब है कि अगर आपने जीन्स और व्हाइट शर्ट भी पहनी है, मेक श्योर योर व्हाइट शर्ट इज आयर्नड एंड स्टेन फ्री। दूसरा, बंदियों को वो बंदे बहुत अच्छे लगते हैं एंड स्टेटिस्टिकली दे आर मोर अट्रैक्टेड टू मैन हु स्मेल गुड। सो मेक श्योर कि आप अपना डीओ ट्रैश करो और एक कलोन चूज करो इंस्टेड ऑफ दैट। तीसरी चीज ये है दैट गर्ल्स subconsciously are attracted to men who play an instrument and it's never too late to learn guitar ya tabla ya harmonium, it doesn't matter. Aap instrument play karte ho, the girls are going to be attracted to you anyway. And you know the most important thing is be a gentleman, kyunki aaj when someone is pulling out a chair for us girls ya hamare liye darwaza khol rahe hain, that's really attractive. Is sab ko try karke dekho and I promise you all the girls will stop treating you like their best friend aur wo aapko apni दूसरी गर्लफ्रेंड से भी छुपाने लगेंगी। एंड व्हेन दैट हैपेंस, थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या एफबी पर। एंड व्हाइल यू डू दैट, सेंड मी योर नंबर इफ यू हैव एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट, आई विल बी हैप्पी टू कॉल यू। और इस सब के बीच में कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I hate the fact कि हमारी कॉलोनी में एक बंदी है जिसे ये लगता है that I want her man. I mean, honestly, sometimes I look at her and I'm like, यार तुझे लगता है I want your man? मुझे लगता है कि why would even you want your man? देखा तूने अपने बंदे को, खाना वो बनाता नहीं है, सारा दिन slugs की तरह कोने में पड़े रहता है. अगर उसने कभी गलती से अपने घर के कपड़े खुद धो दिए तो उसे लगता है कि उसे पद्मश्री मिलना चाहिए, और कभी उसने अपने खुद के बर्तन धो दिए तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी सासू माँ को उसे फोन करके उसके पाँव छूने चाहिए ओवर वीडियो कॉल. Why in the world would you think I want a man like that? I don't want a man by and large unless he is doing something that I myself am not capable of doing. And if you know, on that note, aapke saath kabhi aisa hua hai ki falsely you have been accused of wanting somebody else's partner, but you don't even care about that person's existence. Agar haan, to main aapka dard samajh sakti hoon, aur uske bare mein nudes compare karne ke liye, aap mujhe dhoond sakte ho Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead, be a good human being and a naughty one too, and hit me up on your socials, and while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La birba, la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
2: थोड़ी ना
3: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है, आप
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
6: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ यू हैड अ वन नाइट स्टैंड. हे भगवान, ये दुनिया आपको कितना जज करने वाली है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: जिसका मतलब ये है कि आपने जिंदगी में जो भी गन मचाया है, इट डजंट रियली मैटर, आप यहाँ के कन्फेस कर दो और मैं आपको रोशिफाई कर दूंगी, मामला यही दफना देंगे और उसके बाद आप अपनी गंदी हरकतें एक नए तरीके से जारी रख सकते हो. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. लेट्स फिगर आउट व्हाट डर्टी थिंग्स ही हैज बीन अप टू. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी, कैसे हो आप?
1: मैं तो अच्छी हूँ. आप एक स्केल ऑफ 1 to 10 पर कितने गंदे बच्चे हो?
3: मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, लेकिन कुछ लड़कियों के लिए जो, इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए जो बच्चे जैसा ही होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है. तो मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को ना पेट, स्पेशली मुझे कुत्ते नहीं पसंद आ रहा. सॉरी फॉर द लिटरल लैंग्वेज.
1: दैट्स ऑलराइट. होता है, कोई लोगों को नहीं पसंद.
3: ठीक है, मुझे नहीं पसंद. मतलब आपको पसंद है बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे डर लगता है. ठीक है, एक तो अच्छी बॉडी हो या कुछ भी हो तो लड़कियों को लगता है, या किसी को भी लगता है, या किसी कुत्ता से है, किसने बनाई है बॉडी, इसलिए थोड़ी बनाई है कि कुत्ता आके काट ले मुझे. तो मुझे डर लगता है इस चीज से. और अब मेरी जो गर्लफ्रेंड है, उनको कुत्तों से कुछ ज्यादा ही प्यार है. मैंने उन्होंने घर पे रखा हुआ है कुत्ता. तो अब मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, जब वो मैं आऊँ तो कुत्ता बंद हो. ठीक है, कुत्ता नहीं आना चाहिए हमारी कॉन्वर्सेशन या हमारे बीच में बिल्कुल भी. तो हम लोग अब यू नो वी आर मेकिंग आउट, और तभी उसके बाद पीछे से मेरे को, मैं सामने हूँ, पीछे से आके मुझे कोई कर रहा है. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई. और भाई साहब मैंने ठीक मारी, मैं कहा तेरी मतलब लिटरली ठीक. एंड उसके बाद ही जितना फनी लग रहा है उतना ही डरावना सीन था ये. मेरे सांस सूख के मैं ऐसे हो गया, डर गया बिल्कुल. मैंने फिर उसके बाद बोला अपनी बंदी को, मैंने कहा सुन यार, तेरी जिंदगी में मैं रहूंगा क्या ये कुत्ता. तो इमेजिन करिए उसने कुत्ते को चूज कर लिया मेरे.
1: Oh my God, this is like so bad. Oh, यार आपके साथ तो बहुत खराब हुआ. एक तो like you are in the middle of getting action, और हो सकता है वो doggy also wanted to get some fun.
3: तो यार वो मेरे से क्यों action मांग रहा है. तो मतलब बहुत उस टाइम देखो, मतलब मैं भी बता नहीं सकता, उस टाइम तो मैं ऐसे डर गया था बिल्कुल. ये मेरे साथ हुआ क्या, ये पीछे से कौन आ गया.
1: एक तो ना मुझे ये डॉगी स्टोरी इमेजिन करके इतना फन लग रहा है, और आई एम फीलिंग रियली बैड कि उस बंदी ने आपको नहीं अपने डॉगी को चूज किया.
3: बस फिर मैंने उसको बोले ठीक से डॉगी रख, मैं जा रहा हूँ कहीं और.
1: आर यू सिंगल नाउ या आपको कोई मिल गया है बिना डॉगी?
3: नहीं, अभी आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग. तो
1: ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, वी कैन टॉक ऑफलाइन. बट मीनवाइल अगर आप चाहते तो मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ. ओनली इफ यू वांट, ले लीजिए प्लीज थोड़ी सी रोशिफिकेशन.
4: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: एंड जस्ट बाय द वे, मेरे घर में कोई डॉगी नहीं है.
3: ये तो बहुत हमें मिलना चाहिए.
1: आई थिंक सो, मेरे घर में 3 बिल्लियां हैं. जस्ट सेइंग.
3: ठीक है, नहीं ठीक है, हम कहीं और मिल लेंगे.
1: इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू मिस्ट्री कॉलर. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कमबख्त डॉगो प्रॉब्लम है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: तू सफर मेरा.

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट, सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: बचपन में एक कहावत थी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि जो इंसान जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो. सो एक हम सबके दोस्तों में एक कलेक्टिव दोस्त है, शी इज अ फ्रेंड्स फ्रेंड्स. उसके बारे में मैंने उसके जितने भी इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखे थे, बड़े ही क्यूट और थॉटफुल से थे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आप ऐसा करें, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ. मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है. देन वन ऑफ दीज डेज जब हम बैठे हुए थे 3 दिन पहले, शी कॉल्ड अप जो हमारी कॉमन फ्रेंड है और फोन पर वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा था. भाई उसने जिस बदतमीजी से मेरी दोस्त से बात की, जिस टोन ऑफ वॉइस में उसने कॉन्वर्सेशन की, आई वॉज सो शॉक्ड. इंस्टाग्राम पर, एंड वो ऑलमोस्ट, शी इज ऑलमोस्ट क्या, इन्फ्लुएंसर है ही, इंस्टाग्राम पर उसकी बातें देखकर ऐसा लगता है कि ये कितनी प्यारी इंसान है, शी वुडंट हर्ट अ फ्लाई. और जैसे वो मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, जस्ट बिकॉज मेरी फ्रेंड ने उसे कहा था कि यार तेरी हाउस पार्टी में मैं नहीं आ सकूंगी बिकॉज मुझे मम्मी के साथ कहीं जाना है, दैट वुमन वॉज रिलेंटलेस. और तब मुझे सीरियसली समझ में आया क्यों कहते थे नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. हम इंस्टाग्राम पे लोगों की पर्सोना देखकर मान लेते हैं कि ये इंसान ऐसा ही होगा और इसका कोई अदर रूप नहीं होगा, बट इट्स वेरी शॉकिंग टू फाइंड आउट दैट समटाइम्स द पीपल ऑन सोशल मीडिया

आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे आर इन रियल लाइफ. अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक वी शुड टोटली टॉक अबाउट इट, स्पेशली अगर आपने डेटिंग एप्स पर कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB, आई विल जस्ट कंटिन्यू टू से द वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज सेड, जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड.

पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: किस झुकेगा नहीं साला।
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी का फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गाय
3: नहीं दी थी
2: मैं
3: कल को। अरे लेंस
2: ऐसे
3: पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
2: हैं। सर क्या बात, सुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
6: इट पकड़ा।
7: ओह गॉड, वन मोर।

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

सत्ते पे सत्ता, ये फिल्म जब आप देखते हैं ना, आपको समझ नहीं आता कि किसको ज्यादा पसंद किया जाए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें वो जो सातों के सातों भाई है ना, इतने मजेदार हैं, एक एक किरदार है वो अलग अलग। अभी मैंने लास्ट टाइम फिल्म देखी थी तो मुझे शक्ति कपूर पे बड़ा प्यार आ रहा था यार। वो जो उसमें मंगल का रोल करते हैं ना, जो बात करते करते थोड़ा अटकता है। और भी जो भाई का किरदार निभा रहे हैं जितने भी एक्टर्स, वो सारे किरदार इतने यूनिक है ना, सबको कोई ना कोई ऐसी स्पेशलिटी दी गई है। सत्ते पे सत्ता उन फिल्मों में से एक है, वो जहां भी मुझे देखने को मिले ना, मैं तो बैठ जाती हूँ। 1982 की वन ऑफ द हिट फिल्म्स, सुपर हिट मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज आपको पता है 1982 की टॉप 10 फिल्मों में ये आती ही नहीं है। कौन सी फिल्में आती हैं? एक तो डिस्को डांसर, विधाता, प्रेम रोग, खुद्दार, निकाह, अशांति, राजपूत, फर्ज और कानून, शक्ति, एंड हाउ टू फॉरगेट अमिताभ बच्चन साहब की ही नमक हलाल। तो इसका ये गाना सुन लेते हैं जिसमें सीख समझाइश दी जा रही है हमको। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: मिर्ची
4: नवीन
3: बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू उसके लिए क्या करना पड़ेगा
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ।
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताऊं।
3: ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्ची पे।
4: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकु। थैंक यू।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on.

0: शर्मिला टैगोर जब स्कूल में स्टूडेंट थी तो कैसी थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: वेरी स्टूडियस, और जो हमारे कैप्टन जो कहते थे, आई वॉज अ स्लेव ऑफ माई स्कूल कैप्टन, अगर मुझे

1969-70 में एक अमेरिकन फिल्म का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके काफी सारे वर्जन थे, काफी सारे सिंगर्स ने इसे गाया था। एक वर्जन मैं आपको सुनाती हूँ जो वहाँ के तब के फेमस सिंगर एंडी विलियम्स ने गाया था। गाने के वर्ड्स हैं, रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माई हेड। सुनिए जरा।

ऐसा कहा जाता है कि इसके म्यूजिक से 1976 की फिल्म चलते चलते का जो गाना दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे उसका म्यूजिक लिया गया है। वेल, आप ये गाना सुनो जरा दूर दूर चलते चलते का और खुद ही डिसाइड करो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो फिल्म बड़ी स्पेशल होती है जो हमने सिनेमा हॉल में पहली बार देखी होती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो सिनेमा हॉल, वो शहर, वो वक्त, कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी होती है ना। वैसे आपको पता है शाहरुख खान ने पहली कौन सी फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी? भाई तब वो 8 साल के थे और स्कूल में ना उनकी हिंदी बड़ी कमजोर थी, तो उनकी मम्मा ने उनको बोला कि भाई हिंदी के टेस्ट में तुम 10/10 लेकर आओ, तब तुमको फिल्म दिखाने ले जाएंगे। तो शाहरुख ने ऐसे वैसे जैसे भी करके, थोड़ी सी चीटिंग भी करके, हिंदी के टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10/10 लेकर आए। और तब उनके पेरेंट्स उनको दिल्ली के विवेक सिनेमा हॉल में 1973 की जोशीला फिल्म दिखाने ले गए। ये यश चोपड़ा साहब की फिल्म थी, उसी का गाना सुन लेते हैं। गाना थोड़ा सैड है लेकिन याद कितनी स्पेशल है। आपकी भी ऐसी कोई याद होगी जब आपने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी थी, कौन सी देखी थी, कौन सा थिएटर था वो, कौन से शहर में, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

आपको पता है सिंगर शब्बीर कुमार मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। वेल, उनकी आवाज से भी समझ में आता है कि वो रफी साहब के कितने बड़े मुरीद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और शब्बीर कुमार साहब ना इस तरह के इवेंट्स में परफॉर्म करते थे, एक शाम रफी के नाम या मोहम्मद रफी सॉन्ग्स नाइट। और इसी तरह के किसी इवेंट में उनको नोटिस किया मनमोहन देसाई साहब ने। भाई उस टाइम पे लोग मोहम्मद रफी साहब जैसी आवाज ढूंढ रहे थे, बिकॉज रफी साहब हैड पास्ड अवे इन 1980। और तब देसाई साहब ने इनका नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रेकमेंड किया, और कुली में अमिताभ बच्चन साहब की आवाज ये बन गए। उसी साल 1983 में इनकी बेताब फिल्म भी आई, जिसमें सनी देओल की आवाज ये बन गए। उसी फिल्म का ये गाना सुनते हैं, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, साथ में लता मंगेशकर की आवाज भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
3: क्या हो गया
4: सर, मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया है, क्या कर दिया आपने।
3: क्या हुआ क्या है
4: सर, एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
3: कब दिया था आपने।
4: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
3: क्या प्रॉब्लम क्या है।
4: चंद्रो फोन लेके आ,
3: डिस्प्ले आ रहा है।
4: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार।
3: फोन आ रहे हैं और ओके।
4: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
3: बेल बज रही है।
4: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है। मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये।
3: अरे आपने लिया कहाँ से था।
4: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
3: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप।
4: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप।
3: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
4: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: थोड़ी ना
4: मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
3: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
4: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
4: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे,
3: फोन थोड़ी ना होते
4: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
3: फोन मत करिए,
4: यहाँ फोन मत करिए यार।
5: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई।
3: हेलो
5: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
3: अरे सर काम का टाइम है,
5: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
3: कुकड़ू कु।
5: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: तेरा क्या होगा कालिया।
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कपूर खानदान के चश्मो चिराग ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज का ये गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और कपूर खानदान के ही एक चश्मो चिराग थे शम्मी कपूर साहब, जिन पर न जाने कितने ब्रिलियंट अमेजिंग माइंड ब्लोइंग गाने पिक्चराइज हुए हैं, लेकिन उनका मन पसंद ऐसे दिल को छूने वाला फेवरेट गाना पता है कौन सा था? उनका खुद का। 2011 में जब उनकी डेथ हुई, उससे पहले तक जो फोन वो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें उनकी रिंग टोन थी ये गाना। कौन सा गाना? शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, पगला कहीं का फिल्म का ये गाना। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

जूल थी फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय एसडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है एसडी बर्मन से आपको प्यार से फिल्म इंडस्ट्री में कर्ता कहा जाता था। कर्ता का मतलब कार्य करने वाला या क्रिएटर। अच्छा, 1944 में जब एसडी बर्मन कलकत्ता से बॉम्बे आए थे ना, तो बहुत बेजार हो गए थे उस शहर से, फास्ट पेस्ड लाइफ, और उनको लगा कि बॉम्बे बहुत मटेरियलिस्टिक है, उनके स्वभाव का नहीं है। उन्होंने मन बना लिया था कि भाई वापस चले जाएंगे कलकत्ता, लेकिन फिर जैसे तैसे वो रुक गए। अच्छा वह रुक गए, नहीं तो उनकी कहानी, उनका जीवन वैसे आगे नहीं बढ़ता जैसे बढ़ा। और फिर हमें आर डी बर्मन भी मिले, जिनका कंपोज किया हुआ अगेन आइकॉनिक गाना हम सुनेंगे यहाँ पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on.

1975 में ना एक फिल्म आई थी काला सोना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसका म्यूजिक कंपोज किया था आरडी बर्मन ने, और इसका जो टाइटल म्यूजिक था ना, इसका थीम म्यूजिक, वो जो आरडी बर्मन ने कंपोज किया था ना, वो आप थोड़ा सा सुनिए जरा।

सुनी सुनी सी धुन है ना। वेल, इस धुन को इन्होंने दोबारा इस्तेमाल किया था 1977 में इस गाने के लिए जो हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, खुद आरडी बर्मन की आवाज, फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1981, then 1993, then 2003. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 10-10 साल के गैप वाले साल वो साल हैं जब संजू बाबा और उनके पापा सुनील दत्त साहब ने किसी फिल्म में साथ में काम किया था। साथ में काम किया था मतलब एज सन एंड फादर काम किया था। सो 2003 में मुन्ना भाई MBBS, 1993 में ये फिल्म थी क्षत्रिय और 1981 में ये फिल्म थी रॉकी, जो संजू बाबा की लॉन्च फिल्म थी, जो सुनील दत्त साहब ने ही डायरेक्ट की थी। इसी का गाना सुनते हैं। आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, आशा भोसले, किशोर कुमार, आरडी बर्मन की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं।

हरकत में, बड़े को भी छोटे को भी, खरे को भी छोटे को भी, दुबले को भी मोटे को भी, नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो, दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
4: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है, क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
4: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
4: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
4: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ, आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
4: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन, आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
4: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
4: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
4: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
4: गायब
3: नहीं। मैं कल को
4: फोटो खींचे,
3: अरे लेंस ऐसे
4: पूरे
3: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
4: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
4: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
4: नहीं सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
4: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
4: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
4: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
4: सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
4: कहाँ होता है बताइए।
5: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: 70s की दो हीरोइंस परवीन बाबी और जीनत अमान ने ये पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया कि हिंदी फिल्मों के हीरोइंस कैसी दिखती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर चाहे वो उनके लुक्स हो, उनका मेकअप हो, स्टाइलिंग, फैशन, फिगर हो, इस बारे में सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने क्या कहा था।
1: ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, इत्तेफाक से हो गया। There was no strategy, it was who I was. I was studying in America, मैं वहाँ से आई थी। So I had a cosmopolitan upbringing. So that was who I was. And those films worked. And because the films worked, I was accepted by the audience.
0: वैसे आपको पता है अपनी पहली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जो सुपर हिट हो गई थी, जिसके बाद ये सेंसेशन बन गई थी, उसके बाद ये सब छोड़ छाड़ के बैग वैग पैक करके यूएस जाने वाली थी। देवानंद साहब ने उनको रोका कि भाई यहाँ रुक जाओ, तुम्हारा बहुत स्कोप है।
1: Yes, that is exactly what happened. क्योंकि मुझे फिल्मों के बारे में बहुत कम पता था, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि you know I was starting a career. तो ये सारी फिल्में एक के बाद एक हिट हो गई, तो तब मुझे पता चला कि you know what I'm a leading lady in Hindi films. So Yes, then I started to enjoy.
0: बस इसी enjoy में इन्होंने इतना बड़ा और ढेंटडैन टाइप का करियर बना लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

सुनो, हम किसी से कम नहीं, ठीक है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और नहीं, मैं कोई शेखिया नहीं मार रही, मैं एरोगेंट नहीं बन रही, मैं तो ये बता रही हूँ आपको कि 1977 की हम किसी से कम नहीं के म्यूजिक के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब ने आरडी बर्मन की कुछ 200 ट्यून्स रिजेक्ट की थी, पर फिर पंचम कौन से कम थे, उन्होंने वो 200 ट्यून्स कहीं और बेच दी। मतलब ऑफ कोर्स वो अच्छी ट्यून्स थी, तो किन्हीं और फिल्मों में, किन्हीं और गानों में इस्तेमाल कर ली गई। और इस फिल्म के लिए जो ट्यून्स चुनी गई थी, क्लासिक ट्यून्स, उन्हीं में से एक ही आइकॉनिक सॉन्ग सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ क्या लिखा है गुलजार साहब ने इंतजार पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो गुलजार साहब कहते हैं, सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं हजार किया, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया, फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब, ये गुनाह हमने एक बार किया। और इंतजार के ऊपर ही गुलजार साहब का लिखा हुआ, एक्चुअली किसी के आने का इंतजार खत्म होने पर जो खुशी होती है उस पर जो गुलजार साहब ने लिखा है, अब हम वो गाना सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट। और इमेजिन कीजिए आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, बहुत कसके भूख लगी है और खाना ऑर्डर किया है, डिलीवरी बॉय बस आपका खाना लेकर आ ही गया है और ये गाना चल गया है।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट.
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: परेशानी, आ हा हा हा हा, जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे, पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान, तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद हर्ट ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो।
0: देवराग के साथ
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डोमिनेटिंग लोगों से परेशान होने के बजाय उन्हें सही तरीके से हैंडल कैसे करें, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक सवाल आया है, इन्होंने अपना नाम छोड़ा है मैथ्स बेस मेकर, मेरे ख्याल से कोई काम का हैंडल होगा। वो लिखते हैं कि अगर हमारे आसपास हमेशा डोमिनेटिंग लोग हों जो हर बात में कंट्रोल करते हैं, दबाव बनाए रखते हैं या हमारी बात और भावनाओं को महत्व ना देते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ शांति और आत्मसम्मान बनाए रखते हुए कैसे रहना चाहिए?
4: डिफिकल्ट हो सकता है। देखो, अभी हम हमेशा कहते हैं choices. अगर आप किसी डोमिनेंट व्यक्ति के साथ रहते हैं, and if it's getting very toxic for you, और आपके पास ऑप्शन है लीव करने का, तो भले अगर आप कर सकते हैं। अगर वो वर्क प्लेस आती है और आपको लगता है सामने वाला गलत है, दबाता है, कंट्रोल करता है, अपनी पावर को मिस यूज करता है, तो आपको अगर उसमें से निकलना है, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू, इट इज ओके, बट दैट इज नॉट ऑलवेज एन ऑप्शन। कभी कभी तो आप वर्क प्लेस में भी नहीं छोड़ सकते, कभी कभी तो वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो दूसरी चीज होती है कि अपने को इतना स्ट्रांग बनाना कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े।
3: जी।
4: कोई आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आपके माइंड को तो डोमिनेट नहीं कर सकता ना। बाहर आपको कुछ करने के लिए कह सकता है, आपको गलत लगता है, आप मना करेंगे, तो कंट्रोलिंग व्यक्ति रिजेक्ट करेगा।
3: सही बात है।
4: पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पर है,
3: बिल्कुल,
4: रिजेक्ट भी करेगा, आपसे कुछ प्रिविलेजेस भी ले लेगा।
3: बहुत बढ़िया।
4: लेकिन अगर आप अपने को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि उस रिजेक्शन का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता और आप किसी भी प्रिविलेजेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप राइट पर रह सकते हैं। और राइट पर रह करके आपका उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस में नहीं पड़ता। समवेयर आई फील इफ यू कैन लिव विद अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, यू ग्रो वेरी फास्ट।
3: अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि आप एडजस्ट करना सीख लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसको अवॉइड करना है या इसको ऐसे हैंडल करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। कई लोग उसी चीज को चैलेंज समझते हैं, कहीं उसी को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आप अपॉर्चुनिटी समझेंगे और कहेंगे कि ये वही तो ट्रिगर कर सकते हैं जो मेरे अंदर है, वो कंट्रोलिंग है, तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड होऊंगा। अगर सी दे कैन ओनली ट्रिगर व्हाट इज विद इन मी, वो तो नहीं ट्रिगर कर सकते जो मेरे अंदर है। तो अगर कोई डिफिकल्ट पर्सनालिटी है, वो हमारी वीकनेसेस को भी ट्रिगर करती है।
3: वेरी नाइस।
4: अगर मैं उसको अपॉर्चुनिटी समझूं एंड आई सी इट एज अ मिरर कि ये मेरे अंदर भी, तो मैं जल्दी जल्दी अपसेट हो जाता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे अंदर बहुत वेस्ट चलता है, सो आई विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने को एम्पावर करूँ ना। कितनों को छोड़ेंगे?
3: बिल्कुल सही बात।
4: कितनों से किनारा करेंगे?
3: सही बात।
4: कितनों को बदलेंगे? इससे तो अपने को बदल रहे।
3: और मैथ्स बेस मेकर जो इंस्टाग्राम का हैंडल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर जिद है उनकी आंधियों की तरह चलने की, तो हमारी भी आदत है दिए की तरह चलने की। ये सोचें और आगे बढ़ें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज की जेनरेशन को सक्सेस का असली मतलब कैसे समझाना चाहिए, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मैं जिडू कृष्ण मूर्ति को पढ़ रहा था और उन्होंने कमाल की एक बात कही कल्चर के बारे में और कैसे हमारे एनवायरमेंट में जो होता है वो बहुत हमको इम्पैक्ट करता है। तो आज के जो 20-30 साल के जो जेनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो आज जिंदगी संभाल रहे हैं, उनको सबसे बड़ा झूठ सक्सेस के बारे में क्या भेजा गया है आपके हिसाब से?
4: सक्सेस जो कई बार आजकल देखे जाते हैं वो एक्सटर्नल लेवल पर देखे जाते हैं। सक्सेस एक्चुअली क्या होती है? एक है फाइनेंशियल सक्सेस, जिसमें आपके मटेरियल कंफर्ट्स हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ वही सक्सेस नहीं होते। आपके पास सब प्रकार के मटेरियल कंफर्ट्स हैं पर आपकी रिलेशनशिप कोलैप्स हो रही है, लोग आपको दुआ नहीं देते, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, और उससे भी बड़ी बात आप लोनली फील करते हैं, आपको खुशी नहीं है, आप अंदर से कंटेंट नहीं है। तो सक्सेस, सफलता का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली।
3: ये आपने बहुत अच्छे से, कमाल से एक बार पहले भी कहा था मुझे, धन मन जन, इस तरह से आपने कुछ समझाया था
4: ना, मन भी शांत हो, तन भी हमारा कंफर्टेबल हो, धन भी है और जन रिलेशनशिप्स। कई जगह पर रिलेशनशिप्स कोलैप्स हो रही है, उसका भी तो टोल होगा ना
3: जी।
4: तो सफल होना जरूरी है, लेकिन ये सारे पैरामीटर्स चेक करें। और मुझे सफलता शब्द ज्यादा पसंद है सक्सेस से ज्यादा हिंदी में, क्योंकि सफलता का मतलब होता है सफल करना। एक व्यक्ति जो सफल है, जो उसकी निशानी होगी कि जो कुछ उसके पास है, चाहे वो स्किल है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज है, धन है, समय है, वो फिर उसको दान में लगा देता है कि जो मुझे मिला है वो हम शेयर कर रहे हैं। पर दान एक ऐसी चीज है, आप जितना देंगे
3: उतना ही वापस मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। हम
4: कोई भी चीज बढ़ाने का तरीका है कि आप उसको देना शुरू करें। तो सफलता माना सफल करना। तो हमारा जो सफलता होता है अक्वायर करना, सब अक्वायर करते रहना, पर एक्चुअली सफलता है अक्वायर करना नहीं, शेयर करना। सो इफ यू सी दैट इन समबडी देन यू नो कि वो सफल है, वो सिक्योर होते हैं सफल लोग।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Edge Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या फर्क है और दोनों हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि सक्सेस के पैरामीटर्स हमने शायद धन से मापे हो, फाइनेंशियल सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हम अंदर बहुत मिजरेबल होते हैं, हम बहुत खोखले से होते हैं, और बात हमको ना बहुत सालों बाद रियलाइज होती है, क्योंकि उस समय हम जब 20 30 40 साल के होते हैं, हम काम में इतने मसरूफ होते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते। और जब आपको अपने साथ बैठना पड़ता है, जब शायद काम थोड़ा कम हो गया होता है, रिलेशनशिप शायद आगे मूव ऑन हो चुके होते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं यार मैं लोनली भी हूँ, सॉलिट्यूड हो चाहता था लेकिन लोनली हो गया। तो ये
4: दोनों में फर्क है, एकांत है, एक अकेलापन है।
3: तो ऐसा क्यों होता है कि ये बहुत बाद में समझ में आता है, और ये शायद स्पिरिचुअलिटी का लेसन हमें कोई पहले सिखाता ही नहीं।
4: से दो कारण होते हैं। एक जो कारण है कि जो सफलता आपने बाहर के प्राप्त करी उसका तरीका क्या था। कभी कभी आपने बाहर की सफलता गलत नहीं है, धन संपत्ति गलत नहीं है, कईयों को लगता है धन माया है, धन माया नहीं है, लोभ माया है।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
4: आपने अगर उसके लिए कहीं चीट किया, किसी को दुख दिया, ग्रीड इज रॉन्ग। धन तो धन होना और एक कंफर्टेबल लाइफ होना उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपने वो कमाने में आप अनएथिकल रहे थे, कईयों को दुख पहुंचा, कईयों को चीट किया, आपके किसी कर्म से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो जो एनर्जी है वो लौट करके आती है। इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि आप बाहर से बहुत सफल हैं लेकिन तरीका अगर ठीक नहीं था तो वो अकेलापन खालीपन महसूस होता है। दूसरा जो कारण है कि आपने बाहर तो बहुत मेहनत करी लेकिन अंदर जो खुशी है वो मन की स्थिति है। आपके ख्यालात कैसे हैं? अगर आपने अपने ख्यालातों को खूबसूरत नहीं बनाया, वरना आप बहुत सफल हैं और फिर भी आप किसी से तुलना कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके आप उनके प्रति आपकी भावनाओं में शुद्धि नहीं है, आपकी सोच के अंदर ही पॉजिटिविटी नहीं है, तो बाहर से आप बहुत सफल हो सकते हैं, बिलियनर मिलियनर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा सोचना नहीं आता
3: तो खुश नहीं होंगे,
4: नहीं हो सकते अपने बारे में, दूसरे के बारे में, परिस्थिति को लेकर के अगर आप सोच अच्छा नहीं सकते तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो एक, बाहर का धन कमाए लेकिन अंदर का धन, ज्ञान धन, वो ज्ञान धन की भी कमाई करना, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना, वो आना चाहिए। और दूसरा, बाहर का भी जो धन कमाए उस धन में दुआ लगे होनी चाहिए सबके। घर में कोई ऐसा धन नहीं आना चाहिए क्योंकि धन से अन्न आता है, अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। अगर आपने ऐसा कोई धन कमाया जिसमें किसी के बददुआ है तो उसका प्रभाव सारे घर के ऊपर पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुश्किल सिचुएशंस में अपना नजरिया पॉजिटिव और बैलेंस्ड कैसे रखें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बार हम बात कर रहे थे तो आपने नजरिए के बारे में बात की थी और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था जहाँ आपने ये पानी की बोतल ली थी और ऐसे बताया था कि देखो तुम्हारी तरफ से क्या दिख रहा है और मेरी तरफ से क्या दिख रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बोतल के समक्ष आपने इसको पेश किया था कि कई बार नजरिया हमारा जो पोजीशन होता है उससे बनता है। हम कुछ और देख रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और देख रहा होता है। तो उसमें एक सवाल आया है, तारा चौहान जी लिखती हैं कि समस्या तो यह है कि कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता और वो हमारी जगह आकर देखना नहीं चाहता, तो समस्या का समाधान कैसे होगा?
4: कोई मना, वो वेट कर रहे हैं कि दूसरा बदले।
3: जी,
4: वही हमने कहा था कि ये जो एक इंतजार है कि दूसरा बदले,
3: वो कभी नहीं
4: होगा, वो नहीं हो सकता।
3: जी,
4: जरूरी है हम उनको समझें। और कभी कभी अगर आप किसी का नजरिया नहीं भी देख सकते, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, ये तो एक एग्जाम्पल था, तो ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करना जरूरी है कि अगर इस समय पर ये वो बात कह रहे हैं, कुछ उनका पर्सपेक्टिव होगा,
3: वो सही ही होगा,
4: सही ही होते हैं। हमारे और उनके संस्कार अलग होते हैं, हर बार उनके शूज में जाकर उनके नजरिए को नहीं देख सकते। कई बार ट्रस्ट करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है, मना कई बार उनको भी नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत जल्दी जल्दी डाउट करता है और वो ये कहेगा नहीं, सबको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सबको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट अच्छी चीज है, पर वो नहीं कर पाता। आपको समझ में नहीं आता कि मेरे समझाने के बाद भी उनको ये बात समझ क्यों नहीं आती। देन यू हैव टू ट्रस्ट कि उनके पास्ट में कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा, कोई धोखा उनको मिला होगा, इस जन्म में या पिछले जन्म में होगा, इसलिए उनका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है। सो यू जस्ट ट्रस्टिंग द पर्सन कि अगर उनका ये बिलीफ है उसके पीछे कोई कारण होगा। हम ट्रस्ट नहीं करते, हम अपसेट हो जाते हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं।
4: कि हमारे समझाने के बाद भी इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बिलीफ सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो एक बार समझाने से नहीं जाएंगे, एक बार समझाने से ट्रिगर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा, मे बी दे विल एक्सपेरिमेंट विद समथिंग दैट यू आर सेइंग।
3: ये तारा चौहान जी के सवाल से मुझे एक बहुत अच्छा कोटेशन याद आ गया, डॉक्टर वेन डायर या ड्वायर ऐसे बोल के, अमेरिकन सेल्फ हेल्प ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बात कही थी, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स दैट यू लुक एट चेंज। बहुत खूबसूरत बात है लगी मुझे, और बिल्कुल आपके बॉटल वाले एग्जाम्पल से बहुत फिट बैठता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: कौन बोला?

0: लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirch.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: टॉक्सिसिटी को सहना सही नहीं, लेकिन हर बार खुद को विक्टिम मान लेना भी ठीक नहीं है। इस बैलेंस को कैसे समझें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बहुत कॉमन ट्रेंड बोल सकते हैं, हकीकत भी होगा ही, कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो टॉक्सिसिटी को, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो, बॉसेस हो, जो भी हो, उसके लिए एनवायरनमेंट को, मैनेजर्स को, दूसरों को ब्लेम करते हैं। और सही भी है, होता भी होगा, मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है। सोसाइटी को भी ब्लेम करते हैं, ज़रूर होता होगा, लेकिन इस विक्टिम मेंटालिटी में चलने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखना छोड़ देते हैं। शायद मैं भी करता ही होऊंगा कभी ना कभी। तो ऐसे लोगों से कौन सा वो हार्श ट्रूथ है जो उनको बताना बहुत जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं हम दूसरों की जगह खुद की तरफ उंगली करें?
4: हार्श ट्रूथ तो ये है कि आप कितना भी चाहें, आप दूसरे को नहीं बदल सकते। आप ब्लेम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, सारा दिन बैठ करके उनके बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, पर चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो वो चीज़ आपको ही डिप्लीट कर रही है। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है भी, तो पहले तो अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, ये तो ऐसा है कि सड़क पे इतना ट्रैफिक क्यों है? इतना कैसे बढ़ गया? पहले तो इतना नहीं होता था। चलाएं तो कैसे चलाएं? अब आप कितना भी करें उससे कोई फायदा तो है नहीं।
3: रियलिटी
4: है, ट्रैफिक है और बढ़ रहा है। तो आप ये देखते हैं कि हम उसमें कैसे अपने को सेफ रखें। मुझे ए से बी डेस्टिनेशन पर जाना है, हम ये भी कर सकते हैं, ये कैसे चला रहा है, इसको लाइसेंस कैसे दिया इसको, लेकिन हम वो भी करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमारा एम तो यही होता है ना कि मुझे सेफली पहुंचना है, मेरी गाड़ी पर डेंट नहीं लगना चाहिए, ऐसे ही मेरे मन पर भी डेंट नहीं लगना चाहिए। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच करके मेरे मन पर डेंट लग रहा है, वो आपको डिप्लीट कर रहा है। अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और आप उसको छोड़ नहीं सकते, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें,
3: बहुत अच्छी बात है। और नहीं छोड़
4: कोई
3: सकते,
4: जरूरी तो नहीं है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ही सारा जीवन बिताना है। अगर आपके पास वो पावर है या पॉसिबिलिटी है, पावर भी नहीं, पॉसिबिलिटी है, कई बार वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक होते हैं, आप छोड़ सकते हैं, फैमिली नहीं छोड़ सकते ना, क्या करेंगे? एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ही हैं, झगड़ते रहते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, वो अभी अडल्ट नहीं है, कहाँ जाएगा छोड़ करके? तो फिर अपने को इतना स्ट्रांग बना लें कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से अपने को प्रोटेक्ट कर सकें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
1: सिंस ओवर 15 इयर्स लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
3: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
6: Plus, grooms के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। तालेकर कृष्णानंद जी लिखते हैं कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हमारा अस्तित्व क्यों है।
3: कभी कभी ये हम क्वेश्चन तब पूछते हैं जब थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं।
2: परेशानियां ज्यादा होती तभी,
3: तब लगता है ये क्या है, जीवन ही क्यों बनाया, भगवान ने क्यों बनाया, सुख दुख क्यों बनाया। एक्चुअली पर्पस है लाइफ का टू लिव
2: जी।
3: आप एंजॉय करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप कभी कभी डिफिकल्ट चैलेंजेस हो या उसमें भी आप कुछ सीखते हैं। सो द होल आइडिया इज टू ग्रो, टू लिव, टू एक्सपीरियंस, इसलिए हम एग्जिस्ट करते हैं।
2: वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। वैसे एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे, कार्ल जंग नाम था उनका, और वो लिखते हैं कि the mere purpose of existing is primarily to light the life of an inner being. तो अगर हम खुद को हमेशा अंदर ऐसी experiences देते रहें जिससे inner power हमारी बढ़ती रहे और अंदर हम बहुत अपने जोत जलाते रहें, तो वो एकमात्र बहुत खूबसूरत तरीका है जीवन जीने का।
3: See, realization होना कि हम being है। हम भले doing mode में ज्यादा रहते हैं पर हम being है जिसने एक physical body ली है। और इसीलिए हमारी जो एग्जिस्टिंग का पर्पस है टू बी पीसफुल, टू बी लविंग, टू बी कंपैशनेट, टू बी काइंड। और बीइंग में होकर के फिर हम जो भी करते हैं, उस जो भी हमारा रोल होगा, वो बीइंग की पर्सनालिटी उसके अंदर आती है,
2: उससे ऑटोमेटिकली आएगी।
3: एज लॉन्ग एज आप बीइंग का ध्यान रखते हैं, आपको हमेशा फील होगा आपकी लाइफ बहुत फुलफिलिंग है।
2: अच्छा,
3: रोल से मैटर नहीं करेगा। आप नर्स भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपका कोई भी रोल होगा, बट अगर आप बीइंग में रहकर के वो रोल प्ले करेंगे, यू विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ एंड योर लाइफ।
2: वेरी नाइस।
3: आप खुद भी जॉयफुली वो रोल प्ले करेंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट सम डिफरेंस। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने की जरूरत नहीं है, जरूरी है कि वो रोल हम कैसे प्ले करते हैं। कभी कभी बहुत सिंपल सा भी रोल होगा, सिंपल सा भी व्यक्ति होगा, वो कुछ ऐसा कह करके चला जाता है या कुछ
2: बहुत प्रोफाउंड होता है,
3: बहुत प्रोफाउंड होता है। सो एज लॉन्ग एज आप बीइंग स्टेज पर हैं, यू आर एग्जिस्टिंग एंड यू आर प्लेइंग योर रोल वंडरफुली।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Esalen.
6: શું તમે હેલ્થકેર મેળવવા વિશે ચિંતિત છો? શું તમને ખબર છે કે ન્યુયોર્ક વ્યક્તિઓ, પરિવારો અને નાના બિઝનેસ માટે ઓછા ભાવમાં હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે? એપ્લિકેશનની ચિંતા ન કરો, SACSS એનરોલમેન્ટ સ્પેશિયલિસ્ટ તમને આ પ્રક્રિયામાં મદદ કરશે। અમારો સ્ટાફ 20 કરતા વધુ ભાષાઓ બોલે છે અને અમે તમને હેલ્થકેર મેળવવામાં મદદ કરીશું। સાઉથ એશિયન કાઉન્સિલ ફોર સોશિયલ સર્વિસીસ ને કોલ કરો 718-321-7929 અથવા SACSS ઓફિસમાં રૂબરૂ મુલાકાત લો 14302 45th એવન્યુ ફ્લશિંગ ન્યુયોર્ક વરહુ માહિતી માટે કરો www.sacssny.org।
7: नो
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, shall we renew our vows?
10: Absolutely, and while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
9: Renew?
10: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
9: What better way to celebrate than with something timeless?
10: Visit Tanishq New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, गिल्ट से बाहर कैसे निकले जब गलती सुधारी ना जा सके। अगर आपसे गलती हो गई हो, आप उसे दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपको माफ नहीं करता या अपनाने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए?
3: बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो गिल्ट क्या होता है, रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, लेकिन गिल्ट अच्छा नहीं है
2: जी।
3: गिल्ट होता है कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स। रियलाइजेशन जरूरी होता है, आपने रियलाइज किया कि आपने गलती करी है, लेकिन गिल्ट होता है, हाय मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, नेगेटिव थिंकिंग है। वो आपको डिप्लीट करती है और चांसेस हो जाते हैं कि आपसे दोबारा गलती होगी।
2: ये बहुत जरूरी समझना।
3: हाँ, क्योंकि आप जितने कमजोर होंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो 1 second ऑफ गिल्ट इज इम्पोर्टेंट। आप उसको 1 second ऑफ गिल्ट बोले या रियलाइजेशन बोले, वो रियलाइज करना जरूरी है। जिन्होंने सवाल लिखा उन्होंने रियलाइज किया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हमारे से गलती ही नहीं हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला, मना जो दौड़ता है वही गिरता है, जो चलता है वही फिसलता है। अगर आप कुछ करेंगे तो आपसे कभी ना कभी भूल हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए कि वो भूल अगर आप दोबारा करते हैं तो हम कई बार कहते हैं ये चॉइस है। आप फिर तीसरी बार करते हैं तो ये हैबिट है। चौथी बार करते हैं तो ये तो कैरेक्टर है, वो अलग चीज है। लेकिन आपने एक बार, आपसे कुछ हुआ, आपने उस चीज को रियलाइज किया और आपने उस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया, फिर भी अगर सामने वाला नहीं स्वीकारता तो ये उनकी प्रॉब्लम है। इस प्लेटफॉर्म पर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम में से कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हो। हम सब गलतियां करते हैं, हम रियलाइज करते हैं, हम सीखते हैं, हम बेटर बनते हैं। और हमारे पार्टनर का ये, हम दोनों पार्टनर माना जो भी रिश्ते में है, लक्ष्य होना चाहिए कि हम दूसरा चांस दे कि व्यक्ति अपने को बेटर वर्जन बना सके। यही तो हमारा रोल है। पर कभी कभी हम इतने इमोशनली वीक होते हैं कि उनकी गलती से हम इतने हर्ट हो जाते हैं और उस हर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते और उसके लिए कंटिन्यूस किसी दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं। आप एक बहुत अच्छा व्यक्ति खो देंगे।
2: कभी कभी ये भी होता है कि शायद जो चीज है जिस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है या जो गलती है वो शायद इतनी बड़ी है जिसके लिए सामने वाला आपको नहीं माफ करना चाहता। इट कुड बी अडल्ट्री, इट कुड बी समथिंग जो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
3: कितनी भी बड़ी हो, अडल्ट्री भी हो, कितनी भी बड़ी हो, देन ऑल्सो आई फील कि अगर वो रियलाइज करते हैं एक चांस तो देना चाहिए। हैबिट है कि नहीं वो आप देखें। एक होता है कि आपने चांस दिया पर वो उनका संस्कार है, वो बार बार करते हैं, रियलाइज भी नहीं करते, उनके मन में उस चीज का कोई पश्चाताप भी नहीं है, वो है ही ऐसे इंसान, तब आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। पर आप कहें कि वो एक बार भी ऐसा नहीं करेगा, ये होना ही नहीं चाहिए।
2: चांस देना बनता है
3: हर एक को। आज हमारे से भी कोई गलती हो सकती है, अगर हम गलती करते हैं और हमें कोई चांस देता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कहते हैं दोबारा नहीं हम कर सकते, हम इस व्यक्ति का फेथ नहीं तोड़ सकते। तो ये कह देना कि नहीं ये रेड फ्लैग है, ये एक बार हो गया तो रिश्ता ही खत्म, ऐसा नहीं होता। दो जने हैं रिश्ते के अंदर, हर चीज के लिए आपको तैयार होना चाहिए और कम से कम एक चांस तो हर एक को देना ही चाहिए। इतना जल्दी रिश्ता खत्म करना, वो भी तो फिर रिश्ते की कोई फाउंडेशन नहीं रहे ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, कुछ सवाल आए हैं। निकिता गुप्ता लखनऊ से लिखती हैं कि नमस्ते मैम, मैं बहुत परेशान रहती हूं अपनी बीमारियों से। इस कारण बहुत चिड़चिड़ी रहती हूं और गुस्सा भी बहुत आता है। बेटा सुनता नहीं है, छोटा है, मन में नेगेटिविटी है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। लॉन्ग टाइम से तबीयत खराब रहती है। बेटे की फिक्र और बीमारी के कारण जॉब भी छोड़ दी मैंने। प्लीज सजेस्ट करें कि मैं पॉजिटिव और खुश कैसे रहूं। फैमिली में भी कम सपोर्ट मिलता है हस्बैंड और सास का।
3: बीमारी का पेपर इजी नहीं होता है, क्योंकि और किसी भी चीज से आप थोड़ा किनारा कर पाते हैं, लेकिन बॉडी से आप किनारा नहीं कर सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट, होता है वेरी चैलेंजिंग टाइम ऑफ लाइफ, अगर एक के बाद एक बीमारी आती है। लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि पेन इज कंपल्सरी, लेकिन सफरिंग इज ऑप्शनल। जिसका ये मतलब है कि शरीर को बीमारी है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग है। तो शरीर को कोई बीमारी है, है, आप उसका ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मन बीमार हो गया कि मेरे को ये बीमारी क्यों आ रही है, मेरे बच्चे का क्या होगा, इतने समय से बीमारी आ रही है, हमारे घर में तो कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, जब एक बार आप ये सोचना शुरू कर देते हैं तो वो शरीर की बीमारी भी ठीक नहीं होगी, चाहे डॉक्टर कितना भी ट्राई कर ले,
2: नुकसान ही करेगी आपको उल्टा।
3: मतलब बहुत देर लगेगी आपकी जो रिकवरी है, आपकी जो बीमारी है उसको ठीक होने में समय लगेगा। सेकेंडली, आप अंदर में इरिटेट हो रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर, तो आप वो इरिटेशन अपने बच्चे को रेडिएट कर रहे हैं।
2: जी बिल्कुल,
3: इसलिए वो बच्चा आपसे दूर जा रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा। और फिर जब हम ऐसे इरिटेटेड रहते हैं तो घर का माहौल भी सारा वो हो जाता है। तो बीमारी का पेपर बाहर से आया था, लेकिन बाकी जो सारे पेपर है, एक रिश्ता खराब हो रहा है, घर का माहौल खराब हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बीमारी में आपने अपना ध्यान नहीं रखा, अपने मन का ध्यान नहीं रखा। तो इस बीमारी में भी आप कहें, बीमारी भी कल्याणकारी है। परमात्मा कहता है हर चीज कल्याणकारी है। आप इस बीमारी को भी कहें, आई है चली जाएंगी, हर सीन आती है चली जाएंगी, ट्रीटमेंट भी लेते रहें, लेकिन अपने मन का ध्यान रखें, मैं खुश हूँ, शरीर बीमार है।
2: सही बात है, ये बोलते रहें आप,
3: अपने को बार बार याद दिलाएं, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, आप खुश रहेंगे, खुशी मन की स्थिति है। जब आप अपने को कहेंगे चलो शरीर बीमार है, लेकिन हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बहुत अच्छा परिवार है, इतना अच्छा बच्चा है, भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है, एक विघ्न आया वो भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आपको छोटी लगेगी। पर आप कहेंगे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो फिर वो छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है।
2: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मैं देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। तुम्हारी चाय रेडी है, कॉफी रेडी है, ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए ढेर सारी गॉसिप, गपशप, न्यूज, मस्ती एंड मच मोर। और साथ साथ में आज मेरे पास तुम्हारे लिए कॉन्टेस्ट भी है जिसमें तुम जीत सकते हो कुछ अमेजिंग प्राइजेस। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी लाइफ का फंडा काफी सिंपल है। वो ये कि लाइफ के रेडियो पर खुशियों का वॉल्यूम बढ़ाओ, सैडनेस को थोड़ा सा साइड ट्रैक पे रखो और मेन कैरेक्टर एनर्जी में आकर पूरा दिन मिर्चीदार बनाओ। ऐसे पूरा दिन मिर्चीदार बनाने के लिए तुम्हारी सुबह मिर्चीदार बनाती हूँ मैं, बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर तुम्हें अभी बहुत कुछ मिलने वाला है अगले कुछ घंटों के लिए। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244, दैट्स माय नंबर। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड एंड

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rámbala!
1: ¡Murga, murga! ¡La viento a la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Mirchi?
4: ¿Es Navid?
3: ¿Bol rahá hu?
4: अगर किसी का वो जो हम बनाते हैं वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा.
4: तो मैं अभी बता दूं?
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
4: संजना.
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का.
3: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं.
3: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं.
3: ओके चलिए.
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
5: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी?
4: मुझे मना कर एक बार में दिखा, दिमाग खा रखा है.
5: अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का.
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है रेडियो मिर्ची पे.
4: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू. थैंक यू.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
13: विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी, फ्राइडे जून 26, हार्ड रॉक एटलांटिक सिटी. बुक एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com.
14: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 732-357-8200. जय गुरुदेव.
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
19: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर सुबह सुबह तुम विशाल मिश्रा के गाने गुनगुना रहे हो तो ये कोई इंसिडेंस नहीं है, बल्कि आज तुम जीत सकते हो विशाल मिश्रा के पागलपन टूर 2026 के टिकट्स राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। एनसाई यूएसए इंक प्रेजेंट्स विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी फॉर पागलपन टूर 2026। द कॉन्सर्ट इज हैपनिंग फ्राइडे 26th ऑफ जून को 7 PM ऑनवर्ड्स एट हार्ड रॉक लाइव एट अटीज अरीना अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में। अब कॉन्टेस्ट टाइम है। सिंपल सा सवाल मैं पूछने वाली हूँ, उसका मिर्चीदार सा आंसर देना है। 3 options भी देने वाली हूँ मैं। मुझे बताओ विशाल मिश्रा इज परफॉर्मिंग लाइव इन विच स्टेट। ऑप्शन ए न्यू जर्सी, ऑप्शन बी जुपिटर एंड ऑप्शन सी झुमरी तलैया। प्रीटी इजी राइट। फटाफट से अपने आंसर्स भेजो, या तो व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। मैसेज करना कैसे, सबसे पहले लिखना है विशाल मिश्रा, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है, और उसके बाद ऑप्शन ए बी या सी जो भी तुम्हें सही लगता है फटाफट से भेजो मुझे अभी की अभी, ताकि तुम जीत सको इस पागलपन टूर के टिकट्स। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
4: शशि वो मैनहट्टन है।
3: मैन हैटन
5: मैन आजमी हैट टोपी और मोमोज टैन इन हिंदी
4: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
3: Chamakte Sitare 2026.
2: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
6: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
5: Renew?
6: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
5: What better way to celebrate than with something timeless?
6: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search istunara, Krishna Jewelers me, exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है.
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
16: It's 8:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.

0: ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਰ।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. और अब हम चलने वाले हैं हमारी टाइम ट्रैवलिंग जर्नी पर. स्टार्टिंग इन 1815, द बैटल ऑफ वाटरलू. आज के दिन नेपोलियन बोनापार्टे फेस्ड हिज फाइनल डिफीट. And 1858 में इंडिया रिमेम्बर्स द ब्रेवरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता था. वो बिकेम अ सिंबल ऑफ करेज आफ्टर फाइटिंग इन द अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. जंप टू 1940, फ्रॉम लंदन चार्ल्स डे गॉल मेड हिज लेजेंडरी रेडियो अपील आस्किंग पीपल टू कीप रेजिस्टिंग ड्यूरिंग वन ऑफ हिस्ट्रीज टफेस्ट टाइम्स. फिर आया 1946, गोवा रेवोल्यूशन डे. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हेल्प्ड स्पार्क अ मूवमेंट इन मारगांव दैट बिकेम अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन Goa's journey away from colonial rule. Then 1956 mein India passed the Hindu Succession Act. And in 1983, absolute icon moment. Dr. Sally Ride became the first American woman in space. और अब अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स की बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक कॉन्टेस्ट में एक सवाल पूछा था जिसका मिर्चीदार जवाब देकर तुम्हें मिल सकते हैं विशाल मिश्रा के कॉन्सर्ट के टिकट्स. बिकॉज़ आईयूएसए इंक ब्रिंग्स विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी पागलपन टूर 2026 के लिए, जो की होने वाला है 26 जून को. अब कॉन्टेस्ट का सवाल बड़ा ही सिंपल है. विशाल मिश्रा इज परफॉर्मिंग लाइव इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है न्यू जर्सी, ऑप्शन बी है जुपिटर एंड ऑप्शन सी है झुमरी तलैया. फटाफट से अपनी एंट्रीज भेजो या तो व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244 पर, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. लिखना तुम्हें क्या है, सबसे पहले लिखना है विशाल मिश्रा, उसके बाद अपना पूरा नाम और उसके बाद ऑप्शन ए बी या सी. सही जवाब लिखकर मुझे भेज देना है मेरे हैंडल नेम पर, दैट्स MIRCHIPRIS. और अभी फटाफट से मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए चलाती हूँ. मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची का।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला। सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब सुनने वाले हो वेदर का फोरकास्ट। राइट नाउ इट्स अराउंड 69 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स अ लिटिल बिट क्लाउडी एंड रेनिंग। सो इफ योर हेयर हैड प्लान्स टुडे, आज वेदर ने तो सब कुछ कैंसिल कर दिया है। हेड्स अप, वैसे थंडरस्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टिल नेक्स्ट 1 आवर। सो इफ द स्काई सडनली स्टार्ट्स टू मेक दिस सराउंड साउंड टाइप का म्यूजिक, तो समझ जाना कि थंडरस्टॉर्म चालू हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्लाउड्स जो है वो सेटल हो जाएंगे एंड द डे विल स्टार्ट बिहेविंग इटसेल्फ। टुडेज टेम्परेचर स्विंग्स फ्रॉम 68 डिग्रीज फारेनहाइट टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट एंड यस इट विल फील लाइक 69 टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट। और हमारी देसी फैमिली के लिए इसका मतलब है कि हुडी पहनो, चाय पकौड़े वाला मौसम चालू हो चुका है। वैसे मॉर्निंग में ये हाल रहने वाला है, लेकिन आफ्टरनून आते आते तुम्हें थोड़ी सी एसी की जरूरत पड़ने वाली, और इवनिंग आते आते फिर मूड थोड़ा सा कूल हो जाने वाला है। फन फैक्ट ये है कि आज एक्चुअली इज अ लिटिल बिट वार्मर देन यस्टरडे, यानी कि आज तुम्हें थोड़ा सा लाइट जैकेट पहनना पड़ेगा। लेकिन बाहर जाते वक्त एसपीएफ 50 प्लस लगाना बिल्कुल मत भूलना एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और अभी मिर्चीदार गाने मेरे पास प्रिपेयर्ड है तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पर। फटाफट से मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब सुनने वाले हो खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
2: मिर्ची आवर का थ्री।
1: सबसे पहले, एट द बायलैटरल मीटिंग ड्यूरिंग द G7 समिट, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड द इंडियन PM नरेंद्र मोदी मेट एंड डिस्कस्ड अ रेंज ऑफ टॉपिक्स। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ट्रंप ऑल्सो स्पोक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन पोजिशन ऑन वुमेन स्पोर्ट्स एंड यूथ रिलेटेड पॉलिसीज व्हाइल प्रेजिंग इंडियाज लीडरशिप। नंबर टू पर पोर्टुगल कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ट बिकेम द ओल्डेस्ट आउटफील्ड प्लेयर टू स्टार्ट अ फीफा वर्ल्ड कप मैच एट 41 इयर्स एंड 132 डेज। ऑल्सो जॉइंस द वेरी एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ प्लेयर्स अपियरिंग इन 6 फीफा वर्ल्ड कप्स। एंड नंबर थ्री पर इंडिया रिकॉर्डेड देयर हाईएस्ट एवर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टोटल, पुटिंग अप 209/5 अगेंस्ट नेदरलैंड्स। बिग चेयर्स टू स्मृति मंदाना विद 74 एंड शेफाली वर्मा विद 55। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.

0: Milci.
1: Iscabana, Sacabana, Rabana, Burga, Burga, la Virba, la Burga, Milci, Burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
2: लेंस लगाया नहीं
3: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब?
3: नहीं, कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार।
2: गायब हो जाएगी
3: शेरवानी, तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुनके बनाया है?
3: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
10: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
11: Chamakte Sitare 2026.
10: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
12: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
13: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
12: Renew?
13: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
12: What better way to celebrate than with something timeless?
13: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
15: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
16: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
17: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is the Nara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
18: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
19: Tera kya hoga, Kalia?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। सो सिंगर केटी पेरी रिसेंटली ओपन्ड अप अबाउट लव एंड शेयर दैट बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद फॉर्मर कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो हैज ट्रांसफॉर्म्ड हर। उनका कहना है दैट हैविंग लव इन हर लाइफ चेंज्ड हर पर्सपेक्टिव। शी स्पोक अबाउट हाउ हैविंग लव इन हर लाइफ चेंज्ड हर पर्सपेक्टिव एंड इवन रेफरेंस दैट क्लासिक थॉट, मे बी ऑल दोज लव सॉन्ग्स वरंट एग्जैजरेटिंग एट ऑल। केटी का ये भी कहना है कि हाउ समटाइम्स थिंग्स वी कॉल क्लीशेज बिकम क्लीशेज बिकॉज पीपल कीप फाइंडिंग ट्रूथ इन देम। एंड अब लव की बात हो ही रही है तो तनिष्क की बात कैसे ना हो। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहां पर तुम अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज करा सकते हो एंड यू कैन गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड अपॉन डायमंड परचेसेस। साथ साथ में 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 9 कैरेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। फिलहाल प्रिसला के साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर, आने वाले हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नमस्ते माय दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड बिकॉज इंटरनेशनल योगा डे इज कमिंग ऑन 21st of June, मिर्ची ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते हम देंगे लाइफ चेंजिंग, रेपुटेशन डैमेजिंग, बिल्डिंग, कम्प्लीटली योर टेस्ट टाइप की मिर्ची योगा क्लासेस। और आज की क्लास है, प्लीज वेलकम, शादी नहीं हो रही, क्रश अप्लाई नहीं कर रही, आसना। मिर्ची योगाश्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ गुरु प्रसन्नंदा। सब लोग योगा मैट पर आ जाइए, फोन को सामने रखिए, व्हाट्सएप या इंस्टा डीएम खोलिए, लास्ट सीन ऑब्जर्व कीजिए। अब स्पाइन सीधी, होप लो, एक्सपेक्टेशन लोअर, सांस अंदर, मैसेज मत भेजो, सांस बाहर, स्टोरी मत चेक करो। अब राइट हैंड को हल्का सा ऊपर उठाओ, जैसे मे बी दे आर बिजी, और लेफ्ट हैंड से डिग्निटी को पकड़कर नीचे ले आओ। एडवांस्ड वेरिएशन, फोन को उल्टा रख दो, 2 मिनट बाद वापस चेक करना है, फिर फोन उठाना पड़ेगा। रिपीट टिल इन अ पीस तुम्हारे क्रश के साथ साथ क्रश हो जाए। गुरु का साइड नोट, अगर 11 राउंड्स के बाद भी रिप्लाई नहीं आया तो समझो तुम्हें निर्वाणा की प्राप्ति हो चुकी है, अटैचमेंट रिलीज हो चुका है और ऑरा क्लेंस हो चुका है।
2: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
3: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
1: वैसे रियल योगा का आइडिया सिंपल है, यू नो, बैलेंस, माइंडफुलनेस और बॉडी को थोड़ा सा फिट रखने के लिए थैंक यू बोलना पड़ता है। लेकिन मिर्ची पर फिलहाल इस हफ्ते तुम्हारी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी ट्रेन किया जा रहा है मिर्ची के योगा क्लासेस के साथ। अब मुझे बताओ तुम्हारा फनीएस्ट योगा पोज कौन सा है, या फिर एक ऐसा योगा पोज जो तुम सीखना चाहते हो। द सैलरी आई और गई स्ट्रेच, द वीकेंड लॉन्ड्री लंजेस योगा पोज, एंड लैपटॉप को फाइनली बंद करो मुद्रा। फटाफट से मुझे मैसेज भेजो, व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर कनेक्ट करो विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड बेस्ट पोस्ट डिस्क्रिप्शन, विल मेक इट ऑन एयर। अब जाने से पहले ये याद रखो, इफ दे रिप्लाई breathe, if they don't reply also breathe, aur sundaro mirchi mornings mere yani ki prasala ke saath, stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
3: पहले भी मैं तुमसे मिला।
4: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
5: Vishal Mishra.
0: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
6: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
7: Listener MI, back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you, Mirchi Mornings. पर अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है.
2: Rajwas wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,240, $4,240 पड़ रहे हैं उसके साथ. आज सुबह गोल्ड की प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं. कैसे, आइए राजज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं. और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के. आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
1: देयर यू गो. गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La birba, la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है। मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख। ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: हमने थोड़ी ना मैन्युफैक्चर
3: किया सर, आपने नहीं बताया आपको पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SciUSAInc.com.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
13: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
14: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarty to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
13: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
14: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
18: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
19: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
0: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। अब हम बातें करने वाले हैं सितारों की।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: It is Yanimesh Rashi, feeling a little lost lately. Don't panic, no need for a dramatic life reboot. Bas retrace your steps, make one tiny adjustment and boom, comeback season shuru ho jayega. Lucky color is electric blue, lucky number is 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, रीसेंट वीक्स ने थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट डाल दिया है लाइफ में, लेकिन कॉस्मिक कस्टमर केयर का कहना है गुड न्यूज डिलीवरी इज ऑन द वे, तो स्टे ओपन। लकी कलर इज पिस्टाशियो ग्रीन, लकी नंबर इज 28। जेमिना यानी मिथुन राशि, यस मे बी यू टुक ऑन टू मच, लेकिन समहाउ केओस बिकेम प्रोडक्टिविटी। Hashtag respect. Keep chewing through life one to-do list at a time. Lucky color for you is pearl white. Lucky number is 5. Cancer yani Karak Rashi. Universe ka kehna hai, your good fortune isn't random. You earned it. To guilt mat lo yaar, compliments accept karo aur chill maro life mein. Lucky color for you is sapphire. Lucky number is 5. Leo yani ki Sinha Rashi. Someone may test your patience today. Don't react. Smile and just walk away. Nothing annoys drama more than inner peace. Lucky color is burnt yellow. Lucky number is 9. And last but not the least, Virgo yani Kanya Rashi. Things felt delayed. Cosmic traffic is clearing. धीरे धीरे से सब कुछ सही हो रहा है. Patience रखो, आज और pay off मिलेगा कल. और हाँ, don't refresh your life every 5 minutes. Lucky color is black. Lucky number is 19. And that's it for Rashi Zone Part 1. Rashi Zone Part 2 लेकर आऊंगी मैं थोड़ी सी देर में on Mirchi Mornings. मेरा नाम है Priscilla. मुझे connect करो Insta और X पर. मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
3: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
2: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
4: अभी न जाओ छोड़ कर।
3: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
9: पहले भी मैं तुमसे मिला।
10: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
11: विशाल मिश्रा।
8: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ। विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
4: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
5: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स GIA सॉलिटेयर्स नेकलेसेस रिंग्स मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स कृष्णा ज्वेलर्स ओक ट्री रोड ईसलिन।
6: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
7: Chamakte Sitare 2026.
6: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
8: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subha karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
10: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। इट्स हॉट।

0: एक बात बताओ, बचपन में क्या आपका भी ख्वाब था कि आप बड़े साइज वाली चॉकलेट्स खाओ?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. आपको याद है, ads में there used to be chocolates bigger than the usual, और मैं हमेशा चाहती थी कि यार इतना बड़ा चॉकलेट का जो स्लैब है ना, ये खाने को मिल जाए. पर जो ads के बड़े वाले चॉकलेट बार्स हुआ करते थे ना, वैसे दुकान पर कभी नहीं दिखते थे. लेकिन thanks to globalization, we do get to see big, big chocolate bars on selective stores, जो आज भी जब देखती हूँ ना, तो दिल बड़ा excited हो जाता है यार. वो अलग बात है कि यार बचपन में इस चीज को लेकर मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत चाहती थी कि मैं इतनी बड़ी चॉकलेट स्लैब्स खाऊं. लेकिन अब बड़े होने के बाद मैं कभी नहीं खरीदती इतने बड़े चॉकलेट स्लैब्स. एंड द रीजन बिहाइंड दिस बचपन का ख्वाब स्टिल अधूरा होना इज कि अब जब ये बड़े साइज के चॉकलेट्स मिलने लगे हैं ना, तो कैलोरीज और शुगर इनटेक का ज्ञान भी तो भरपूर आ गया है मार्केट में. और बस ये बड़े वाले चॉकलेट बार्स की जो भूख है, ये आज भी अधूरी है. और आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हो रहा है यार कि इसे ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है कि किसको पता कल हो ना हो. मैं क्यों वेट कर रही हूँ कि जब मैं एक सर्टन साइज पे पहुंच जाऊंगी तब मैं वो चॉकलेट बार खाऊंगी? आई थिंक आई शुड जस्ट डू इट. आप क्या बोलते हो, वेट नहीं करना चाहिए ना? बस तो फिर आज ही कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाकर ना इसको खरीदने की कोशिश करती हूँ. बाकी आप मुझे बताना जरूर, हाँ, डीएम करके और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, कि क्या आपको भी ऐसे शौक चढ़ा करते थे बचपन में कि यार ये बड़ा वाला चॉकलेट बार मैं भी खाऊं? बताना. अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डाल रही हूँ. आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
3: पहले भी मैं तुमसे मिला।
4: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
5: Vishal Mishra.
2: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
6: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
8: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
10: Kuch awaazein hoti hain jo seedha dil tak pahunchti hain.
2: Satish Malik aur Anima Johri proudly present an enchanting musical concert by classically trained Dr. Meenal Mategaonkar ka ek timeless musical concert jinka saath denge renowned tabla artist Abhay Datar aur harmonium ustad Ninad Joshi.
10: Aur is khas shaam mein ek dil ko chhu lene wala tribute to Asha Bhosle.
11: Abhi na jao chhod kar.
2: 28th June 3 p.m. at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार 90s के दौर में एक बड़ी क्यूट सी फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था अंजलि। और इस फिल्म का ये गाना, अंजलि अंजलि अंजलि हमारी आंखों का तारा अंजलि, याद है आपको ये फिल्म?
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And long before तारे जमीन पर या सितारे जमीन पर जैसी फिल्में आई, this film was made by Mani Ratnam, who worked on a movie talking about special needs kids, जिस टॉपिक को 90s के दौर में किसी ने नहीं छुआ था। And Anjali was among the first Indian mainstream films जो कि एक ऐसे बच्चे के ऊपर बनी थी who had mental disabilities, और जिस फिल्म ने autism जैसे developmental delay के बारे में awareness फैलाने की कोशिश करी थी, which was a very very rare thing in those days। हाँ, इस फिल्म की जो लीड थी, यानी कि वो जो छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर ये फिल्म का टाइटल रखा गया था, her real name was baby Shamili। और इस बच्ची की उम्र पता है क्या थी जब उसने ये अंजलि का रोल प्ले किया था? She was just 2.5 years old। Can you just imagine? इतनी छोटी सी बच्ची ने अपने कंधों पर पूरी फिल्म चलाई है। और यही वजह थी कि बेबी शामली इवेंचुअली गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर हर रोल, जिसकी वजह से शी बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट रिसिपिएंट्स एवर। और आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस फिल्म की कास्टिंग किस बेसिस पे की गई होगी। वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली, मणिरत्नम सर वॉन्टेड टू कास्ट रियल स्पेशल चाइल्ड, लेकिन फिर रोल इतना कॉम्प्लेक्स था कि उस स्पेशल चाइल्ड से वो एक्टिंग करवाना, वो इमोशंस निकलवाना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से उन्होंने काफी सारे टॉडलर्स के ऑडिशंस लिए बिफोर दे सिलेक्टेड बेबी शामिली। एंड इस फिल्म को शूट करने के लिए कहा जाता है कि मनी सर ने काफी सारे हिडन कैमरास का इस्तेमाल किया, सो दैट वो जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उनके नेचुरल मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए। क्योंकि यार बचपन तो बड़ा मासूम होता है ना, आप उनको एक्टिंग के दाव पेच सिखाओगे ना, तो वो नेचुरल मासूमियत जो है वो निकल कर नहीं आएगी, जो कि वो तब कैप्चर कर ली जाए जब वो निकल कर आए। और कितने सारे तो ऐसे सीन्स थे जिनको की शूट करने के लिए सिर्फ सिंगल टेक्स लिए गए थे, ताकि बच्चों की स्पॉन्टेनिटी जो है वो मेंटेन्ड रहे। यानी कि पहला टेक जैसा भी गया है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो मासूमियत और स्पॉन्टेनिटी थी विच वॉज रिक्वायर्ड ऑन स्क्रीन, तो उस टेक को वैसा का वैसे ही रहने दिया और रीशूट नहीं किया। आई थिंक शायद इसी वजह से ये मूवी हमें इतनी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर वाकई में इतना ऑर्गेनिक इमोशन शामिल है कि जब हमने ये फिल्म देखी तो हम खुद भी रो दिए। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं रोए थे, सेट पर कई सारे लोग रोए थे, जिनके बारे में बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
6: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
7: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu। विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी फ्राइडे जून 26 हार्ड रॉक अटलांटिक सिटी। बुक एट टिकट मास्टर एंड sciusainc.com।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: Listener MI, back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: It's 11:30 AM Mirchi time check.
15: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मैंने जब ये फिल्म देखी थी ना अंजलि, मैं बहुत छोटी थी यार, और मुझे आज भी याद है कि इस फिल्म को देखकर मैं इतना रोई हूँ और इतना इमोशनल हुई हूँ कि मुझे उस ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई थी। और मैं इतनी इनक्विजिटिव थी टू नो अबाउट दैट किड जो कि अंजलि बनी हुई थी पूरी फिल्म में। लेकिन सैडली तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था टू नो मोर थिंग्स अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड। बट ये इकलौती मैं ही नहीं थी जो इतनी इमोशनल हो गई थी इस फिल्म को देखने के बाद। जब ये फिल्म शूट हो रही थी, एट दैट टाइम टू काफी सारे लोग सेट्स पर इमोशनल हो गए थे।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड रेवती जो कि शामली यानी कि ऑन स्क्रीन अंजलि की मदर का रोल प्ले कर रही थी, उनके और शामली के बीच में काफी सारे ऐसे सीन्स थे जो कि इमोशनल सीन्स थे। और जब वो सीन्स शूट हो रहे थे ना, तो जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, वो भी साथ साथ रो रहे थे। स्पेशली वो सीन जो कि हॉस्पिटल में शूट किया गया था, एंड दैट वॉज अंजलिज डेथ सीन। That was really, really heartbreaking. आज भी जब मैं वो सीन देखती हूँ ना भाई, मुझे तो रोना आ जाता है बहुत भयंकर तरीके से। And इसके पीछे की वजह ये है कि मणिरत्नम सर बहुत अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर, और बच्चों को वो पर्सनली रिहर्स करवाया करते थे सारे के सारे सीन्स मल्टीपल टाइम्स, सो दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल कर आए कैमरा पे। क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही पहले टेक के अंदर बेस्ट शॉट निकल कर आ जाया करता था। और वो ज्यादा टेक्स ले भी नहीं रहे थे इस फिल्म को शूट करने के लिए बच्चों के साथ। यही नहीं, मणिरत्नम सर वो सो इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ पेरेंट्स जो कि डील कर रहे थे विद स्पेशल चिल्ड्रन, कि उन्होंने इस फिल्म को महीनों की चाइल्ड साइकोलॉजी की रिसर्च वर्क के बाद ही शूट किया और लिखा। जिसका असर ये हुआ कि ये फिल्म इवेंचुअली वॉज बीइंग यूज्ड एज अ रेफरेंस मटेरियल इन साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन स्टडीज अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज। स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ मनी सर डील्स विद द सोशल इश्यूज, और वो किस तरीके से इन सोशल इश्यूज को मेनस्ट्रीम सिनेमा में लेकर आते हैं और हाईलाइट करते हैं। ये उन्होंने सिर्फ अंजलि के साथ नहीं किया है, उनकी फिल्म बॉम्बे, दिल से, गुरु, ये सारी वो सारी फिल्म्स थी जिन्होंने सोशल इश्यूज को उठा के मेनस्ट्रीम सिनेमा में लाके बड़े पर्दे पर दिखा के उसकी अहमियत को और बढ़ा दिया और उन सोशल इश्यूज को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर किया। ये है हमेशा का जादू जो मणिरत्नम सर अपने लेंस के साथ बिखेर ही देते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हाँ, आज के टाइम पर there is a drawing room, dining room, bedroom, lounge. लेकिन पुराने घरों में इतने fancy terms use नहीं हुआ करते थे बॉस. सीधे सीधे नाम थे हर कमरे के.
2: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And back in the old days ना, जैसी करनी वैसी भरनी. ये कमरों के साथ भी हुआ करता था कि जो काम वो कमरा किया करता था ना, वैसा ही नाम उस कमरे को दिया जाता था. जैसे कि जहाँ खाना खाते थे वो खाने वाला कमरा था, जहाँ टीवी देखते थे वो टीवी वाला कमरा था, जहाँ मम्मा डैडी रहा करते थे वो मम्मा डैडी का कमरा था, और नानी के यहाँ तो भाई फ्रिज वाला कमरा, बिस्तर वाला कमरा और गेहूं वाला कमरा भी हुआ करता था यार. यानी कि जैसा कमरा हुआ करता था, जो उसमें काम हुआ करता था, वैसा ही उसका नाम हुआ करता था. ये लिविंग रूम, लाउंज, डाइनिंग रूम, ये इतने फैंसी फैंसी नाम नहीं हुआ करते थे कमरों के. लेकिन फिर भी ना, कभी पता ही नहीं लगा कि हमने कैसे फ्रॉम खाने वाला कमरा टू डाइनिंग रूम का जो टर्म है ना, वो अपनी जिंदगी में अपना लिया. कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, और जिसमें हमें पता भी नहीं लगा यार कि हमें मुश्किल हुई थी कि नहीं हुई थी जब ये ट्रांजिशन हो रहा था हमारी लाइफ में. क्योंकि बचपन से तो हमारी आदत थी यार, अगर कोई चीज ढूंढनी होती थी जो कि टीवी वाले कमरे में रखी होती थी, तो एक आवाज आती थी कि अरे मेरी चप्पलें कहाँ है, तो अगला कहता था अरे टीवी वाले कमरे के बाहर ही तो उतारी थी तूने. एंड इट वॉज इजी टू फिगर आउट स्टफ. अब अगर कोई तब बोलता ना कि लाउंज के बाहर तो उतारी थी तूने, तो सब गोल हो जाते कि ये कौन सा कमरा आ गया यार हमारी जिंदगी के अंदर. वाकई में यार, कमरे में कमरा, कमरे में हम, इतने रंगीन थे ये नाम की कमरों के नाम में भी ये भरते थे दम. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
6: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
4: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab, mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Zero Period.
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें शायद याद भी ना हो, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूले, क्योंकि तुम हमारी जिंदगी में जीरो नहीं, हीरो थे। जब भी स्कूल की घंटी सुबह सुबह बजती थी ना, तो हमारा दिल अगले 8 पीरियड्स की थकान से पहले ना तुम्हारी आस में ही बैठा रहता था। तुम बाकी पीरियड्स जैसे नहीं थे, ना कोई किताब, ना कोई लेसन्स, ना कोई बोर्ड पे रटा रटाया लेक्चर। तुम तो जैसे स्कूल के बोरिंग दिन में आई एक सांस की तरह थे। कभी तुम म्यूजिक की मस्ती बन जाते थे, कभी तुम लाइब्रेरी की किताबों में सैर करवाते थे, तो कभी मैदान में खुलकर खेलने का मौका देते थे, तो कभी क्लास टीचर से गप्पे लड़ाने का मौका भी मिल जाया करता था तुम्हारे जरिए। कुछ बच्चों के लिए तो तुम होमवर्क पूरा करने का एक बड़ा ही सीक्रेट सा गिफ्ट थे, तो कुछ के लिए तुम वो वक्त थे जिसमें की दोस्ती और गहरी हो जाती थी। याद है वो दिन जीरो पीरियड, जब रिपब्लिक डे की परेड की तैयारी के लिए तुम्हारे टाइम पर ही हम स्कूल ग्राउंड में जमा होते थे, या फिर वो दिन जब किसी टीचर की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और वो एक्स्ट्रा क्लास लेने से मना कर दिया करते थे और हमारी क्लास कैंसिल हो जाया करती थी, तो तुम्हारे बिना एक और खेल का मौका मिल जाया करता था हमें। तुम्हारी कोई तयशुदा पहचान नहीं थी यार, पर शायद इसीलिए ही तुम सबसे प्यारे थे। जब भी कभी तुम्हारा जिक्र होता है और कोई बोलता है जीरो पीरियड, तो एक मीठी सी मुस्कान खुद ब खुद चेहरे पर आ जाती है। तुमने हमें सिखाया कि हर टाइम पढ़ाई जरूरी नहीं होती, कभी कभी बस जीना और दोस्तों के साथ खुलकर हंसना भी जरूरी होता है। अब जब जिंदगी असल जिंदगी के पीरियड्स में बढ़ चुकी है ना, तो तुम्हारी याद और भी गहरा जाती है तुम्हारे उन्ही हंसी ठिठोली वाले पलों के लिए। तुम्हारी पुरानी दोस्त जो अब भी जीरो पीरियड को बहुत मिस करती है, और शायद तुम्हारी वजह से ही जीरो आज भी हमारे लिए हीरो ही है। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करे, उसके बाद में एक और काम करे, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करे, फिर से एक काम करे, खूब सारे काम करे, 10 काम करे। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद हर्ट ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
4: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9082220002 और विजिट aimseducation.edu।
6: It's 12:30 PM. Mirchi time check.
7: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
8: Honey, it's 11 PM, our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Esalen.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शंकर महादेवन की आवाज एंड शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक, दिल चाहता है का ये गाना इज कैसेट के साइड वी का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट
1: द टाइटल ट्रैक। और कौन सा गाना यार, माय गॉड। मतलब इस गाने की खास बात पता है क्या है कि ये गाना जो है ये बीते कल का ही गाना है। मतलब जो गाना इतनी शिद्दत से कह रहा है कि दिल चाहता है कि कभी ना बीते चमकीले दिन। सैडली आज भी जब ये गाना हम प्रेजेंट में गुनगुना रहे होते हैं ना, तो दिल में एक अजीब सी कसक होती है कि यार ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा बचपन, हमारे कॉलेज डेज सब पास्ट में चले गए हैं। और जब तब ये गाना सुना करते थे ना, तो लगता था कि हाँ गाना ही तो है। बट इसके मायने तब समझ में आए जब धीरे धीरे करके ना बचपन हमारे हाथों से छूटता गया, स्कूल छूटता गया, फिर कॉलेज छूटता गया, फिर नौकरी शुरू हो गई, और जब से नौकरी शुरू हुई है तब से लाइफ एक जैसी सी लगती है। बट वाकई में यार वो जो दिन थे वो ऐसे ही थे जहां पर जगमगाते थे, झिलमिलाते थे अपने रास्ते। और हमारे दिल में भाई इतना जज्बा था ना, ऐसा लगता था कि भाई पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, बोलो तुम क्या करना है, हम करके दिखाएंगे। और तभी हम गा दिया करते थे कि ये खुशी रहे, रोशनी रहे अपने वास्ते। हाय कितने नादान थे नहीं हम। बट इस गाने की सबसे प्यारी लाइन पता है क्या है, वो ये है कि कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए, इसीलिए जो आज है ना उसको जी लो। क्योंकि बचपन में भी हम बड़े ही होना चाहते थे, और बड़े होने के बाद भी हमें यही लगता है कि अभी और बड़े हो जाए, अभी और कुछ कर ले फिर खुश हो जाए। नहीं यार, जो है वो अभी है, कल का क्या होगा कल पे छोड़ दो। और अभी जाते जाते यही गाना सुनते हुए जाओ, मैं आपके लिए यही गाना लगाती हुई जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें राई प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और बाकी यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये गाना अगर किशोर कुमार गाते तो कैसा होता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं नहीं, मैं आपको कोई AI टूल यूज करके उनकी आवाज में गाना नहीं सुनाने वाली हूँ। मैं तो ये सोच रही थी यार कि आज तो हम ये सब कर सकते हैं। I'm sure आपने सुना होगा सयारा का टाइटल ट्रैक इंटरनेट पे किशोर कुमार साहब की आवाज में भी अवेलेबल है, एंड इट इज साउंडिंग सो ब्यूटीफुल। तो आजकल हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पहले के टाइम की खूबसूरती शायद यही थी कि इतने रिसोर्सेज या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहुत सारा कुछ बस ख्यालों में, इमेजिनेशन में, इनमें होता था और हमारे बस के बाहर होता था, वही उसकी खूबसूरती थी। अब जरा आप इमेजिन कीजिए, बस उसको कुछ करना नहीं है, बस इमेजिन कीजिए कि आने वाला गाना जो किशोर कुमार साहब की आवाज में है वो अगर मुकेश जी गाते तो कैसा होता। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

मेरी आहों को समझो, मेरी सांसों से पूछो, मेरी आहों को समझो। तुम पूजा हम पुजारी, तुम किस्मत

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
4: पहले भी मैं तुमसे मिला।
5: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
6: Vishal Mishra.
3: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
7: and SaiUSAInc.com.
8: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses aur grooms ke liye stylish sherwanis.
8: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
9: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
10: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
9: Renew?
10: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
9: What better way to celebrate than with something timeless?
10: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: आशा पारेख जी अपने ग्रोइंग अप इयर्स में एकदम टॉम बॉय थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने शेयर किया था।
1: दरअसल ये हुआ है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में सब लड़के ही थे और मैं एक लड़की, तो जो लड़के खेलते थे वही मैं खेलती थी। जैसे वो एक पत्थर मारने की गेम थी, पत्थर मारने वाली गेम सीख ली, काइट फ्लाई करने की टंगे भी उड़ाई है, फिर मार्बल से भी खेली हुई हूँ मैं। इस तरह से वो सब जो हरकतें थी वो लड़कों जैसे हो गई।
0: इसीलिए उनके उछल कूद वाले जो रोल होते थे वो काफी मजेदार होते थे, ज्यादा नेचुरली आते होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

1971 में एक मूवी आई थी बुड्ढा मिल गया, याद है ना आपको? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मिड 80s में ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड में ना एक ए रेटेड मूवी आई थी जिसका नाम था मुझे बुड्ढा मिल गया। अभी बहुत सारे NRIs जब तब के वीडियो स्टोर्स में जाके वीडियो कैसेट लेकर आते थे तो वो 1971 वाली बुड्ढा मिल गया समझ के ले आते थे, और जब वो VCR में उसको चलाते थे तो उनको पता चलता था कि ये तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर। और फिर वो वीडियो स्टोर वाले के पास ऐसे दंदनाते हुए गुस्से में जाते थे कि भाई ये क्या दे दिया तुमने। कुछ लोग नहीं भी जाते थे, वो खुश हो जाते थे कि बेटर कॉन्टेंट देखने को मिल गया। एनीवे, हम अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। 1971 वाली बुड्ढा मिल गया, इसका ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans with Charu, only on

आपको पता है लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी साहब क्या मास्टर आदमी थे? फिर जी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जब वो गाने लिखते थे ना, तो अक्सर गानों में 3-4 अंतरों की जरूरत होती थी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये इतने टैलेंटेड थे कि 20-40 अंतरे भी लिख देते थे कि भाई खुली वैरायटी है, तुमको जो उठाना है उठा लो। ऐसा ये गाना था जो भाइयों बहनों उस साल गीतमाला में पायदान नंबर 1 पर था। कंपोज्ड बाय रविंद्र जैन, सैंग बाय लता मंगेशकर। ये अपने टाइम का सुपरहिट गाना सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। ऑफ कोर्स ब्यूटीफुली रिटन बाय हसरत जयपुरी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनते रहिए मिर्ची।

छोटे होते ना मुझे फिल्मों में बड़ी कंफ्यूजन होती थी, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, अमर अकबर एंथनी की मल्टी स्टार फिल्म्स जो होती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब कभी मुझे लगता था नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ उछल कूद कर रही है, गाना गा रही है वो एक में और एक तू, फिर वो तारिक शाह क्या था वो हीरो का नाम भूल गई मैं, उनके साथ वो गाना गा रही है लिख कर हम दीवाना दिल। फिर उसी फिल्म में जीनत अमान विजय अरोड़ा के साथ चुरा लिया है तुमने जो दिल को वो वाला गाने में परफॉर्म कर रही हैं। फिर हम किसी से कम नहीं का जो कवाली वाला टाइटल ट्रैक था उसमें वो ऋषि कपूर के साथ है, तो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ नहीं आता था। लेकिन एक बात बताऊं, छोटे होते वाली ये जो टेंशन्स जो कंफ्यूजन्स होती थी ना ये अच्छी होती थी, कितनी प्यारी इनोसेंट हार्मलेस सी होती थी। बड़े क्या हो गए, दिक्कतें ही बदल गई भाई, हमें नहीं खेलना ये बड़े होना बड़े होना, हमको वापस छोटा कर दो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से मिल जाए।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स. Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com. क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए, SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट्स आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे. हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे. साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 718-321-7929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02 45th Ave, Flushing, New York. अधिक जानकारी के लिए विजिट www.sacssny.org.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
5: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
4: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
5: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
9: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

0: क्या कहना माधुरी दीक्षित का और क्या कहना उनके डांसर्स का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्या कहना था माधुरी दीक्षित का, उनके वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में एक इंटरव्यू में सुनी उन्होंने क्या कहा था।
1: 1 2 3 ऑफकोर्स मेरा सबसे फेवरेट गाना रहेगा हमेशा, क्योंकि इस गाने ने मेरी एक पहचान बनाई। तब तक मैं सरोजी के साथ काम कर चुकी थी पहले, उत्तर दक्षिण में उन्होंने गाने किए थे मेरे, लेकिन क्लासिकल फॉर्म में ज्यादा किए थे। तो पहली बार ऐसे कुछ वेस्टर्न इंडियन बॉलीवुड ऐसा मिक्स था, तो सरोजी ने कहा कि आपको इसके लिए रिहर्सल करनी पड़ेगी। तो रिहर्सल की हमने, गाना शूट हुआ, जब आया तो लोगों ने इतना पसंद किया।
0: तो देरी नहीं करते हैं, फटाफट सुन लेते हैं ये ढेंटड़ैन गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आए, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 2:30 PM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आर के ज्वेल्स. आर के ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आर के ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: कादर खान साहब एक अलग ही विरली वखरी असीम शख्सियत थे भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सुनी उन्होंने अपने ओरिजिन के बारे में क्या शेयर किया था, कहाँ से वो और उनकी फैमिली बिलोंग करते थे।
1: प्रीन की मेरी वालदा थी क्वेटा बलोचिस्तान की, और मेरे वालिद जो थे वो कंधार के थे, और ये लोग जाके सेटल हो गए थे काबुल में। वहाँ जो है मुझसे पहले तीन मेरे भाई हुए, वो 8-8 साल की एज को पहुंचते थे और मर जाया करते थे सर। अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा डर गई और वो कहने लगी कि ये जगह की हवा जो है वो मेरे बच्चों को साजगार नहीं है, यहाँ मेरे बच्चे जी नहीं पाते हैं, मैं यहाँ से जाऊंगी। गरीब घराना सर, सुबह रोटी खा ली तो दोपहर का ठिकाना नहीं, दोपहर में अगर कुछ बन गया खाना पानी तो रात का भरोसा नहीं। ऐसे गरीब घर में अफगानिस्तान काबुल से कहाँ जाएंगे वो, बहरहाल चल पड़े लोग। होते हुआते धक्के खाते ये कुदरत जो है मेरी जिंदगी का स्क्रीन प्ले लिख रही थी, और मैं उस जमाने में जो है ये ठोकरे खाते खाते धक्के खाते खाते ये बम्बई आए सर।
0: क्या बोलता था ये बंदा भाई, और आप कभी इनके इंटरव्यूज आराम से सुने ना तो आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी, क्या इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी है इनकी। इसी बात पे एक इंस्पायरिंग गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pudani Jeans with Charu, only on

1974 की रोटी कपड़ा और मकान वीरू देवगन साहब की एज स्टंट डायरेक्टर पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वीरू देवगन साहब द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्शन डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जो अजय देवगन जी के फादर भी थे। बहुत सी फिल्मों में इससे पहले ये एज स्टंट मैन काम कर चुके थे। और आपको पता है ये जब 13 साल के थे, लेट 40s की बात है, तब ये पंजाब से भागकर बॉम्बे आ गए थे। फिर उन्होंने बहुत छोटे मोटे काम किए और ये सब करते करते वो ना जो मोहल्ले के लड़कों की गैंग वॉर टाइप होती है ना, उसमें शामिल हो गए। वहाँ लड़ाई झगड़े करते थे। तब आप सोचिए उस टाइम के स्टंट डायरेक्टर स्टंट कोऑर्डिनेटर रवि खन्ना साहब थे, उन्होंने इनको एक स्ट्रीट फाइट में नोटिस किया और इनको उठा के ले आए कि भाई अपनी लड़ाई करने वाली तुम्हारी जो कला है उसको यहाँ इस्तेमाल करो। कई बार लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है अनएक्सपेक्टेडली। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

ऋषि दा की फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कुछ दिन पहले ना मैंने ऋषिकेश मुखर्जी की एज डायरेक्टर डेब्यू फिल्म जो थी 1957 की मुसाफिर, वो देखी और अच्छी लगी मुझे फिल्म। और आप तभी देखें अगर आपको सर्टेन सैड टोन्स इन द फिल्म ओके हैं, मतलब थोड़ी बीच बीच में वो सैड भी हो जाती है। एक्चुअली उसमें क्या है, उसमें तीन कहानियां हैं। तो पहली स्टोरी का एंड अच्छा है, दूसरी स्टोरी का एंड अच्छा है, तीसरी स्टोरी का एंड सैड है। हालांकि वो जो थर्ड स्टोरी है ना, वो बहुत ही पॉपुलर एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी है। तो किसी दिन आपका हैप्पी प्लस सैड मूवी ऐसा देखने का सीन हो तो आप देख सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, स्लो है, सैड टोन वाली पिक्चर है थोड़ी सी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अभी हम यहाँ पे हैप्पी रोमांटिक टाइप का गाना सुन लेते हैं मिर्ची पर।

लोग 3-4 मिनट के गाने नहीं सुन पाते हैं, 12 मिनट की कवाली कौन सुनेगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कहा गया था यस्टरडेज़ के प्रोमिनेंट म्यूजिक कंपोजर रोशन नागरथ जी को, जो ऋतिक रोशन के ग्रैंडफादर भी थे और जिन्होंने कंपोज की थी 1960 की फिल्म बरसात की रात की आइकॉनिक कवाली। ऐसा सुनने में आता है कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ 24 से 27 घंटे लग गए थे और 72 से 75 रीटेक्स। अब उस टाइम पे तो लाइव होता था ना सब, किसी एक से गलती हुई तो पूरा गाना वापस से रिकॉर्ड। और किन किन दिग्गजों ने ये गाना गाया भाई, मन्ना डे साहब, मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, SD बातिश और पता नहीं कितने कोरस सिंगर्स और कितने म्यूजिशियंस। इसमें कुछ पोर्शंस में ना जहाँ पे सिंगर्स ने आलाप लिया है, वहाँ पे लिटरली ऐसा लगता है कि ऊपर वाला आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, ये लिरिक्स रेवोल्यूशनरी हैं। जब भी आप इनको सुनेंगे ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे तो पूरा गाना ही मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तो भी कुछ लाइंस बहुत पसंद है, जैसे खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क, यह है इश्क इश्क। जी, इसी कवाली का दूसरा पार्ट, पहले हमने 5 मिनट सुने थे, अभी बचे हुए 7 मिनट्स राइट है पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
7: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
8: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
9: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
8: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
10: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
11: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
12: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
11: Renew?
12: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
11: What better way to celebrate than with something timeless?
12: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
6: It's 3:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
15: Purani Jeans. With Charu. Only on.

वाह साहब, जगजीत सिंह साहब, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनकी आवाज में, उन्हीं की कंपोज की हुई, साथ में चित्रा सिंह जी ने भी कंपोज की है ये गजल, और इसे लिखा है सईद राही साहब ने। और दोस्ती के बारे में कुछ एक दो शेर अर्ज किए हैं। बशीर बद्र साहब ने लिखा है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। बशीर बद्र साहब ने ही लिखा है, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। अच्छा, इधर राहत इंदौरी साहब लिखते हैं, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। फिलहाल यहाँ पे ब्रेक ली जाए, म्यूजिकल ब्रेक, जहाँ हम दोस्ती वाले एकदम फिल्मी गाने सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Are you worried about accessing healthcare? Did you know that New York offers affordable health insurance for individuals, families and small businesses? Do not worry about the application. South Asian Council for Social Services enrollment specialists will help you with the process. Our staff speaks over 20 languages and we will help you get affordable healthcare. Call the South Asian Council for Social Services at 718-321-7929 or visit the SACSS office in person at 14302 45th Avenue in Flushing, New York. For more information, visit www.sacssny.org.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

Sham Shanda, let's do not donkey have a funky time. दोस्तों थ्रो बैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी से एक रील मोमेंट मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rambala!
1: ¡Murga, murga! ¡La fiesta la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Mirchi?
4: Es Navid.
3: बोल रहा हूँ.
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा.
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
4: संजना.
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का.
3: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं.
3: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं.
3: ओके चलिए.
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
5: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी?
4: दिमाग खा
5: रखा है. अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का.
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है. रेडियो मिर्ची पे.
4: गॉड. मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कहते एक बार, कुकड़ुकू. थैंक यू.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
10: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
8: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
11: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
12: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
13: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarty to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
12: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
13: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
14: અમેરિકામાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ડોર અને આઉટડોર કેટરિંગ સેવા, એન્ગેજમેન્ટ, લગ્ન, બેબી શાવર, જન્મદિવસ પાર્ટી અને એડલ્ટ ડે કેર, તમારા સ્થળ પર લાઇવ કુકિંગની સુવિધા. અમે અમેરિકામાં તાજું ફરસાન અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ. અમે ન્યૂ જર્સી અને ન્યૂયોર્કમાં ડિલિવરી સાથે ટિફિન સેવા પણ આપીએ છીએ. આજે જ બોમ્બે એક્સપ્રેસ અને વૈષ્ણવ કેટરર્સને કોલ કરો એટ 732-986-6241 ઓર વિઝિટ 2849 વુડબ્રિજ એવન્યુ, એડિસન, ન્યૂ જર્સી.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
15: अब मिर्ची खा.
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

दोस्तों कुछ जज्बात वक्त नहीं लेते, सीधा दिल से निकल आते। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक थर्सडे में यार एक पुराना गाना जो आज भी दिल के उतने ही करीब है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यार जब भी मैं सोचती हूँ इस गाने के लिरिक्स इतने ब्यूटिफुल है यार, ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर को कितना वक्त लगा होगा। तो अगर आप भी यही सोचते हो ना, तो उसका जवाब है मेरे पास 5 मिनट। बस 5 मिनट में ये पूरा गाना जावेद अख्तर जी ने लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बस कहा था कि एक सिंपल पोएटिक और रिपीटेबल हुक चाहिए, और जावेद साहब ने वो लेजेंडरी लाइन लिख दी सिर्फ 5 मिनट में। और इतना सोलफुल, इतना सॉफ्ट कि गाना बन गया टाइमलेस। तो चलिए, अगर आज आपको कोई स्पेशल याद आ रहा है, तो उसी के लिए आपके लिए थ्रोबैक थर्सडे में ये गाना प्ले करने वाली हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Sharda. Let's do not donkey have a funky time.
2: कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, मॉर्निंग कम्यूट की जगह एक काम, कप ऑफ चाय, और एक ऐसा काम वो भी ऐसे फील्ड में जहां ग्रोथ भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और आजकल लोग करियर चूज करते वक्त ना सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख रहे हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो आज ही कंसिडर कीजिए अ करियर एज अ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट विथ एम्स एजुकेशन, बिकॉज विथ जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन दिस एवर ग्रोइंग फील्ड। प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन अवेलेबल है और अभी वो लोग आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। For more guidance, call 908-222-0002, 908-222-0002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu for a long-lasting career of medical billing and coding specialist, जहां घर का सुकून भी है और काम करने का मजा भी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, it's hot!

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants, and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करे 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी कुछ कॉन्सर्ट्स ना सिर्फ कॉन्सर्ट्स नहीं होते, वो यादों का रीयूनियन होता है। एक गाना चलता है और आपको आपका पहला प्यार याद दिला देता है, दूसरा गाना आता है और पुराने दोस्त, लॉन्ग ड्राइव्स और वो रात भर चलने वाली बातें भी याद आ जाती है। और जब बात हो विशाल मिश्रा के कंपोज गानों की, तो यार उनके गाने ना सीधा दिल तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए एक्साइटमेंट डबल है क्योंकि इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन, और ये होने वाला है ग्रैंड, मैजिकल और ट्रूली अनफॉरगेटेबल, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं विद पागलपन टूर इन अटलांटिक सिटी। और अगर आपने भी कैसे हुआ पहले भी मैं तुम हो तो या उनके किसी भी गाने को सिर्फ सुना ही नहीं लेकिन महसूस भी किया है, तो ये शाम आपके लिए है दोस्तों। हजारों फैंस एक साथ गाते हुए लिरिक्स, फोन फ्लैश लाइट्स का समंदर और वो गूज बम्स वाला मोमेंट जब पूरा एरिना एक ही सुर में गा रहा होगा, जून 26 की शाम को हार्ड रॉक लाइव ईटिस एरिना में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर साई यूएसए आईएनसी फॉर विशाल मिश्रा पागलपन टूर। और सारे जो रेडियो मिर्ची के विशाल मिश्रा फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही खास कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है कि विशाल मिश्रा का गाना कैसे हुआ, कौन से मूवी का है, यू हैव टू टेल मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो बस डीएम कर दीजिए एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI आपका जवाब, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो एट 9033647244 9033647244, और लकी विनर्स को मिलेंगे इस अमेजिंग टूर के फ्री टिकट्स। तो दोस्तों विशाल मिश्रा पागलपन टूर, डेट नोट डाउन कर लीजिए, जून 26th, वेन्यू हार्ड रॉक लाइव एट ईटिस एरिना, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेन्यू इन द एंटायर न्यू जर्सी। टिकट्स बुक कर लीजिए ticketmaster.com या फिर SIUSAINC। और देखिए दोस्तों इट्स विशाल मिश्रा पागलपन टूर ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी। तो एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होने वाली है जिसकी यादें काफी हफ्तों तक आपके दिमाग में रहेंगी, आपके दिल में रहेंगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर पेरेंट का ना एक सपना होता है कि बच्चे ना दुनिया में कितना भी आगे बढ़े लेकिन अपने रूट्स को कभी ना भूले। और हर डांस लवर जानते हैं कि यार डांस ना सिर्फ स्टेप्स नहीं होते, डांस एक कहानी होती है, एक कल्चर होता है और एक पहचान होती है। और इसी पहचान को 30 साल से संभाल कर रखा है इंडियानिका एकेडमी ने। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन पद्मा खन्ना जी के विजन से शुरू हुई ये एकेडमी आज भी कथक की नजाकत, बॉलीवुड की एनर्जी, गरबा के रंग, भांगड़ा की मस्ती और मॉडर्न डांस की क्रिएटिविटी को एक ही स्टेज पर लेकर आती है। और अब वक्त आ गया है उनके सबसे बड़े सेलिब्रेशन का, चमकते सितारे 2026 यानी इंडियानिका एकेडमी का 30th एनुअल कल्चर एंड टैलेंट ग्रैंड शो। और ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस भरी शाम नहीं होगी, ये उन बच्चों की मेहनत का सेलिब्रेशन है जो महीनों से रिहर्सल कर रहे हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है जो अपने बच्चों को कल्चर से जुड़े हुए देखना चाहते हैं। और ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि अपनी पहचान को सेलिब्रेट करना कितनी खूबसूरत बात होती है। तो दोस्तों कैलेंडर में नोट डाउन कर लीजिए, June 20th यानी शनिवार की शाम 4 PM onwards in Colonia High School, New Jersey। और टिकट बुक करने के लिए विजिट कीजिए indianikaacademy.com। और मिर्ची लिसनर्स के लिए स्पेशल कूपन कोड मिर्ची 2026, जिससे आपको मिलेंगे 30% ऑफ ऑन योर टिकट्स। जो जितने भी न्यू जर्सी के डांस प्रेमी हैं, कथक प्रेमी हैं, बॉलीवुड डांस प्रेमी हैं, भांगड़ा प्रेमी हैं, इस शो को, इस एनुअल गैदरिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही विजिट कीजिए indianikaacademy.com एंड बुक योर टिकट्स विद मिर्ची कूपन कोड मिर्ची 2026। और डांस प्रेमियों के लिए ये अगला मस्ती भरा डांस वाला गाना right here on Mirchi, it's hot.
3: Janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak janak jan

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua, la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्र फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: थोड़ी ना
3: मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर, काम का टाइम है, आप फालतू
4: हैं। सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
9: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी proudly present an enchanting musical concert by classically trained Dr. Meenal Mategaonkar का एक timeless musical concert, जिनका साथ देंगे renowned तबला artist अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
8: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
10: अभी न जाओ छोड़ कर।
9: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
14: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
15: Chamakte Sitare 2026.
14: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianikaacademy.com.
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
19: पहले भी मैं तुमसे मिला।
0: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
13: Vishal Mishra.
2: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
8: Listener MA,
19: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
20: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी क्राइसिस की बात होती है ना, तो यार हर क्राइसिस सिर्फ चैलेंजेस लेकर नहीं आती, कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग हेडलाइंस देखते हैं और कुछ लोग पॉसिबिलिटीज। और जब चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन और मार्केट अनसर्टेनिटी की बातें होती है ना, तो बहुत से लोग अक्सर एक सवाल पे अटक जाते हैं कि यार इसमें घर खरीदने का बेस्ट टाइम क्या होता है, क्या परफेक्ट मार्केट का वेट करना चाहिए या अपॉर्चुनिटी को पहचानना चाहिए जब वो सामने हो। और इसी पर थोड़ी क्लैरिटी और एक्सपर्ट इंसाइट देने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो अनसर्टेनिटी के बीच अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाने और होम बाइंग के लिए क्या ये राइट टाइम है, कैसे इवैल्यूएट करें, पूछते हैं बीश से। ओवर टू यू बीश।
1: जय जयराम मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। मदर नेचर हैज बीन वेरी काइंड टू अस, नॉट वेरी हॉट एंड द यूएस मार्केट्स रिबाउंड एज ईरान डील ऑफसेट फेड वरीज। And yesterday, after Fed rate announcement, the mortgage rates trickled up. Home sales data looks weak in what is typically the housing market's busiest season. Contract signing were down, which called the figures unseasonably slow. Existing home sales declined sharply across New Jersey and in other Northeast metros. Sellers' markets still dominate a reflection of enduring demand, limited new home building, and higher than average incomes. This might be the best time to buy a house in years. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.125%. 20-year fixed mortgage rate, 6%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. I always mention, we offer great mortgage rates. So those who own investment or want to buy investment properties, please call us to find out how aggressively we are priced. We are licensed to do business in New Jersey, New York, and Pennsylvania. We offer conventional loans, FHA loans, DSCR loans, bank statement loans. Also, we offer great rates on jumbo loans. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: बच्चा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
6: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
8: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
9: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
8: Renew?
9: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
8: What better way to celebrate than with something timeless?
9: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
11: I am not going to bed with you ever again.
10: But why? What did I do?
11: That bed is horrible. It's outdated. And when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
10: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
11: Wow. You mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
10: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
11: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
12: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do Nautanki. Have a funky time.
2: दोस्तों, एक अजीब सा मैजिक चल रहा है आजकल। जो गाने हम कैसेट या सीडी पे सुनते थे, वही आज रील्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। क्या आपने भी नोटिस किया है कि यार आजकल ना ये जो सारे गाने हैं वो रीडिस्कवर हो रहे हैं, जो हमने कभी लाइव फील किए थे, जैसे कि लग जा गले, आज जाने की जिद ना करो, या फिर ये शाम मस्तानी है। ये सिर्फ पुराने गाने ही नहीं रहे, ये फिर से नए फेवरेट्स बन रहे हैं। और सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है, इनके नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे कि लो फाई वर्जन्स, अनप्लग्ड कवर्स, इंडी रिक्रिएशंस। हर जगह वही पुराने सुर एक नई आवाज में वापस आ रहे हैं। मतलब यार, एक ही गाना एक जनरेशन के लिए याद बन रही है और दूसरी जनरेशन के लिए डिस्कवरी। तो सच बताओ दोस्तों, इससे ज्यादा खूबसूरत ब्रिज क्या हो सकता है, जहां माँ का फेवरेट गाना बेटी के प्लेलिस्ट में मैच हो जाए। और म्यूजिक का तो यही चार्म होता है ना, कि टाइम भले ही चेंज हो पर मेलोडी अपनी जगह बना ही लेती है। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग चैलेंज हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आपका फेवरेट गाना था जो फिलहाल रीडिस्कवर होता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और मैं बजाती हूँ अपना फेवरेट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार, ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई USA INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आप टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है

Manchester Evening with Vishal Mishra Pagalpan Tour Ek Sham, जहां गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virgua, la burga. Milci, burga.
1: Milci.
2: Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
1: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए

0: फोन नहीं दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है मेरे साथ प्यार से कहते एक बार कुकड़ुकू। थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा। सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर, आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा। हम अमेरिका में ताजा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं। हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं। आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 7329866241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
9: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
8: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
10: अभी न जाओ छोड़ कर।
9: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
11: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
12: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
11: Renew?
12: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
11: What better way to celebrate than with something timeless?
12: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: चांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। सच अ ब्यूटीफुल वेदर दोस्तों, और ये जो वीक है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीकेंड आ रहा है फादर्स डे। और वैसे तो यार फादर्स डे स्पेशल तो होता ही है, लेकिन इस जनरेशन के जो फादर्स है वो और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रीवियस जनरेशन की है, जो यू नो एक बोलते हैं जो एक साइकिल में चलती रहती है, एक बोलते हैं ना कि फादर्स इमोशनली प्रेजेंट नहीं होते थे, वो सारी बातें इस जनरेशन के फादर्स ने काफ़ी हद तक चेंज कर दी है। तो कूडोज टू ऑल दोज फादर्स हु आर स्पेशली यहाँ पर न्यू जर्सी में, जो इतने सारे यू नो कहते हैं जे कि हैंड्स ऑन फादर है यहाँ पर। तो जी हाँ, सच्ची बात है, एंड इट इज़ सीन, इट इज़ अप्रिशिएटेड। तो जितना भी कहा जाए फादर्स के लिए उतना कम है। और ऐसे में अगर फादर्स डे सेलिब्रेट करना है सबको, तो ऐसे में हमारे जो बॉबी जी है फ्रॉम राज जूल्स, वो हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हैं। तो आज भी उनसे पूछते हैं कि फादर्स डे के लिए क्या स्पेशल है। तो नमस्ते बॉबी जी, एंड वेलकम टू टुडे शाम शानदार।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। दोस्तों आप सबको ब्यूटीफुल इवनिंग। देखिए, स्पेशल तो एक चीज है कि हमारे राज जूल्स में थ्री जनरेशंस, मेरे फादर जो आज भी अपनी ब्लेसिंग्स हमको देते हैं रोज, जितने दोस्त हमारे ज्वेलरी खरीदते आते हैं, स्टाफ को लेके, अपने पोते तक को लेके, तो मुझे लगता है जिस जनरेशन में ये हम इतनी दूर रहते हैं हिंदुस्तान से, अगर ऐसा मौका मिलता है पूरे परिवार को साथ रहने का और आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेने का, तो उससे स्पेशल तो कुछ नहीं होता। एंड आई एम ब्लेस्ड एंड राज जूल्स इज ब्लेस्ड टू हैव दैट। सो हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ राज जूल्स। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस फादर्स डे में सबसे अच्छी बात यह है, जब पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में चेंज हो रही है, पीस डील्स की बात हो रही है, तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं पिछले हफ्ते से तकरीबन $100 per troy ounce कम ट्रेड कर रहे हैं पिछले हफ्ते से। सो फादर्स डे के लिए 22 कैरेट गोल्ड की चेन लेनी हो और 22 कैरेट गोल्ड के ब्रेसलेट्स लेने हो, प्लैटिनम के कफ्स लेने हो, ऐसा नहीं है कि पापा के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पापा क्या पहनेंगे या पापा नहीं पहनते, अगर आप उनको स्टाइलिश चीज देंगे तो वो पहनेंगे भी जरूर, चाहे वो प्लैटिनम की चेन हो, प्लैटिनम के मेंस ब्रेसलेट हो, प्लैटिनम के मेंस कफ हो, प्लैटिनम के बैंड हो, फ्यूजन मेटल के बैंड हो। मुझे लगता है राज जूल्स के पास हर एज ग्रुप, हर फादर के लिए कोई ना कोई खूबसूरत तोहफा अवेलेबल है, जो आप rajjewels.com पे इजी सिलेक्शन से शिप करा सकते हैं एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। और मजे की बात यह है कि आप 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए वो ज्वेलरी स्पेशल घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में पैसे दे सकते हैं। कैसे, आइए राज जूल्स के टीम मेंबर आपको एजुकेट करने के लिए तैयार हैं कि किस तरह से अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस हिंदुस्तान से सस्ते हैं, और उसके ऊपर आपकी स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन में जब आप वो खूबसूरत ज्वेलरी पापा के लिए घर ले जाते हैं तो आपको कोई डाउन पेमेंट, कोई इंटरेस्ट, कोई हिडन फी नहीं देनी। गोल्ड प्राइस आज का लॉक होगा और 9 महीने में पैसे आएंगे। कैसे, आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं विद rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो फादर्स हैं उनके लिए तो एक गिफ्ट खरीदना मम्मियों के लिए गिफ्ट खरीदने से भी ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन गोल्ड इज दैट थिंग जहां पर हम उन्हें थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं कि हाँ ये गिफ्ट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो दिस इज द ओनली गिफ्ट जिसके लिए वो खुशी खुशी राजी हो जाएंगे। तो आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com और अपने फादर्स डे की गिफ्ट आज ही बुक कर लीजिए। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
2: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज जूल्स, किंगडम ऑफ जूल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
3: दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
3: Chamakte Sitare 2026.
2: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
4: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज. The king of mortgage industry.
6: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
7: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
8: पहले भी मैं तुमसे
9: मिला. सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा.
7: अमित चेटी ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ. विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर. फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरेना, अटलांटिक सिटी. बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: दोस्तों बॉलीवुड का लैंडस्केप ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना एक फॉर्मूला होता था, बिग स्टार, बिग सॉन्ग्स, बिग रिलीज। आज ना इंडस्ट्री थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुकी है क्योंकि एक्टर्स भी डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं और डायरेक्टर्स भी यूनिक स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है तो सिर्फ ग्लैमर नहीं, कॉन्टेंट भी डिमांड करती है। और शायद इसी वजह से कुछ फिल्म थिएटर में धमाका करती है और कुछ OTT पे कल्ट फॉलोइंग बना लेती है। यार ये इंटरेस्टिंग फेज है जहां बॉलीवुड एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मल्टीपल लेन्स में ग्रो हो रहा है। और सच कहूं तो जब इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट करती है ना तभी आइकॉनिक सिनेमा पैदा होता है। तो आप भी बताना आप कौन सी टाइप की फिल्म ज्यादा पसंद करते हो। टेल मी ऑन Insta@RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रोमियो

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए, SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट्स आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे। साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 718-321-7929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02-45th Ave, फ्लशिंग, न्यूयॉर्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sacssny.org।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
7: Chamakte Sitare 2026.
6: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
8: Listener MA. बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड भी ना न्यू जर्सी टर्न पाइक हो चुका है, क्योंकि तो सबको एक ही वक्त पे निकलना होता है। जी हाँ, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 बॉलीवुड का सबसे क्राउडेड मंथ्स में से एक माना गया है, जहां मल्टीपल मेजर रिलीजेस एक ही महीने में स्क्रीन्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी रिलीजेज एक साथ आने वाली है कि स्क्रीन शेयरिंग और ऑडियंस अटेंशन दोनों के लिए कंपटीशन बढ़ते ही जाने वाली है। और अगर लिस्ट भी देखे ना तो मजा आ जाता है। मतलब मूवीज लाइक मैं वापस आऊंगा, कॉकटेल 2 और कहीं और बड़े बड़े टाइटल्स लाइन में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि यार इसमें ना ऑडियंस का ही फायदा है। अब आप बोलोगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मतलब एक जमाना था हम कहते थे कि यार कोई अच्छी मूवी ही नहीं बन रही है, तो अब प्रॉब्लम उल्टी हो चुकी है। क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं आ चुकी है कि हम ये कहने वाले हैं कि पहली कौन सी मूवी देखे। तो आप भी जरूर बताना कि यार जून में आप अगर एक ही मूवी देख पाओ बॉलीवुड की थिएटर में जाकर, तो वो कौन सी मूवी होगी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। करते हैं यार थोड़े बहुत वॉचलिस्ट कंपेयर, और तब तक के लिए आपके लिए ये मजेदार सा नई रिलीज वाली मूवी का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: मिर्ची, फ्रेश माल, वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pressure. This hour is brought to you by Raj Jewels. Sham Shada, let's do not donkey, have a funky time. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और इंडिया जाने से पहले ना हम सबके बहुत ही छोटे छोटे अरमान होते हैं, जैसे कि माँ के हाथ का खाना, पुराने दोस्त से मिलना, फैमिली टाइम और दो हफ्ते की कंप्लीट रिलैक्सेशन। लेकिन फिर फ्लाइट लैंड होती है और रिलैक्सेशन सबसे पहले इमिग्रेशन क्रॉस करके भाग जाता है, क्योंकि यार अगले कुछ दिनों में ना हमें इतने सारे लोग मिलते हैं जितने हमने पूरे अमेरिका में पूरे साल भर देखे भी नहीं है। और हाँ, हर घर में एक सवाल गारंटीड है। नाम अलग हो सकता है, अंकल भी अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल वही होते हैं कि बेटा अमेरिकन डॉलर में कितना कमा लेते हो। तो दोस्तों, आज का मिर्ची योगा लेसन वही है। इसमें कोई आसन आपको नहीं सीखने मिलेगा, इसमें इस सवाल को कैसे टैकल करना है यही आपको सीखने मिलेगा, द सैलरी क्वेश्चन आसना। क्योंकि जैसे ही ये सवाल आए ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, सीधा आंसर भी नहीं देना है, पहले हल्का सा स्माइल करना है, फिर पानी का एक हाथ सिप ले सकते हो, फिर आसमान की तरफ देखकर एकदम थॉटफुल चेहरा बनाना है और फिर जवाब देना है कि बस अंकल जी आपके आशीर्वाद से पेट भरे उतना ही। एक्सीलेंट। मतलब देखिए, आपने ना पहले लेवल क्लियर कर लिया है और अब दूसरा लेवल तो जरूर आएगा। अच्छा चलो ठीक है बेटा, तो ग्रीन कार्ड मिला और फिर और एक लेवल तो जरूरी आता है कि बच्चे कब। तो हर सवाल का ना एक ही टेक्निक होता है कि आंखें बंद करनी है, सांस अंदर लेना है, सांस बाहर लेना है और दिल से बस इतना ही बोलना है कि अंकल जी या आंटी जी बस आपके आशीर्वाद से जल्दी। तो यही है इंडिया विजिट का योगा, जहां फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की नहीं होती है, जवाबों की टेस्ट होती है। और अब आप भी मुझे बताइए दोस्तों कि इंडिया ट्रिप में आपको सबसे ज्यादा किस सवाल ने योगा कराया है, सैलरी, शादी, ग्रीन कार्ड या कुछ और। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिर्ची योगा के ऐसे ही चटपटे आपके लिए आते रहेंगे, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: Milchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Milchi, burga.
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ आपने।

0: देखी है एल्बम देखी है
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन, आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
0: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
0: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
0: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं
0: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
1: नहीं।
0: मैं कल को अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: अरे
0: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
0: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: हैं। सर क्या बात, चुन के बनाया है?
0: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
0: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
0: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
1: दिखाइए
0: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
0: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: Chamakte Sitare 2026.
8: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
10: Oh no!
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
12: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
13: पहले भी मैं तुमसे मिला।
14: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
15: विशाल मिश्रा
12: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
16: and SaiUSAInc.com.
17: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
18: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
19: तेरा क्या होगा कालिया?
20: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। वैसे इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे है इरशाद कामिल ने, और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस, और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नजरों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की जरूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और बजाते हैं वो गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा राइट on Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu. Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
4: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
5: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
4: Renew?
5: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
4: What better way to celebrate than with something timeless?
5: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
6: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है.
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट
9: मिर्ची, फ्रेश माल.
10: मस्ती स्वैग और जबरदस्त बीट्स हो तो बस एक ही शब्द निकलता है, वल्ला.
11: Oh,

0: इस गाने को आवाज दी है बयानी और हार्डी संधु ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। कॉकटेल 2 से सुनते रहिए वल्ला ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
2: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
3: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हेल्दी लिविंग किसे नहीं चाहिए यार, तो बस हम तो यही सोचते रहते हैं कि अब कल से ही ना रूटीन पूरा चेंज होने वाला है, डाइट फॉलो किया जाने वाला है और इतना ही नहीं वर्कआउट किया जाने वाला है। लेकिन जैसे ही हम शुरुआत करते इतने सारे वीडियोज मिल जाते, इतने सारे सजेशंस और एडवाइसेस मिल जाते कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। फिर लगता है कि यार लेट्स गो बैक टू द रूट्स, ट्रेडिशनल योगा से शुरू करते। लेकिन उस समय भी इतने सारे सजेशन, इतने सारे वीडियोस की तभी भी समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करनी है। तो अगर आप भी इसी चक्कर में फंसे हो तो बस इस इंटरनेशनल योगा डे विच इज ऑन June 21st शनिवार, आपके लिए आ रहा है इंटरनेशनल योगा डे का एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय SKN फाउंडेशन। इवेंट शुरू होगा 8:30 बजे सुबह से लेकर, एंड इट इज फॉर बोथ एडल्ट एंड फॉर किड्स। ये इवेंट होने वाला है 6 Lane Court, बिल्डिंग नंबर 9, Unit 22, हिल्सबोरो, न्यू जर्सी। और अगर आपको रजिस्टर करना है तो बहुत ही सिंपल है, यू जस्ट हैव टू कॉल एट 9086711344, या फिर आप ईमेल कर सकते हो info@skn.foundation.org। और दोस्तों इस इवेंट के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बहुत ही जल्द हम बुलाने वाले हैं हमारे शो में प्रियंका सप्रू को, जो कि यार 6 साल से एक योगा इंस्ट्रक्टर रही है। तो किस तरह से इस इवेंट में योगा की शुरुआत होगी, इंटरनेशनल योगा डे को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, सारी बातें होंगी। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा राइट हियर विद मी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
4: Chamakte Sitare 2026.
3: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।